भक्ति का अर्थ तो यही है कि जब मन संसार से हटकर प्रभु में रम जाए। इसके बारे में कहा भी गया है कि भाव से जो पुकारे, जहां पुकारे, भगवान वहीं प्रकट होते हैं। तो हम भी अपने सच्चे मन से पुकारे प्रभु को इस भजन के साथ।

वास्तव में यदि हम ध्यान दें तो पाते हैं कि जो शांति प्रभु की शरण में जाकर मिलती है वो संसार के किसी भी सुख में नहीं। भक्ति जब हृदय में उमड़ती है तो हर दिशा में उजाला फैल जाता है और यही उजाला हमारे जीवन को प्रकाशमान कर हमें सही मार्ग दिखाता है।

भक्ति कोई बाहरी कर्म नहीं, बल्कि ये तो हमारे भीतर की लौ है जो हर परिस्थिति में प्रकाश देती है। जब जीवन के हर कार्य में जागरूकता और सच्चाई शामिल हो जाए तो वही भक्ति बन जाती है।

104.7 FM रेनबो पर मेरे यानी सुस्मित के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि। एक ऐसा सांगीतिक और भावनात्मक अर्पण जहां हर शब्द, हर सुर और हर मौन प्रभु की आराधना कर रहा है। तो आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ प्रभु अर्चन में 104.7 FM रेनबो पर। आइए जुड़ते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति से।

करुणा से भरा हृदय ही भक्ति का सबसे सुंदर मंदिर है, जहां दूसरों का दुख देखकर मन द्रवित होता है, वहीं से शुरू होती है सच्ची उपासना। बिना सच्ची उपासना के हम ईश्वर को पा भी नहीं सकते, और अगर कामना हो ईश्वर को पाने की, ईश्वर की भक्ति को पाने की, तो फिर इसके लिए बिना सच्ची उपासना कोई और उपाय नहीं है। तो इस उपाय को जीवन में अपनाकर, इस बात को मन में धारण कर जुड़े रहें ईश्वर की भक्ति से, इस भक्ति में प्रस्तुति के साथ।

हम अक्सर संसार को जीतने निकलते हैं, पर भूल जाते हैं कि सबसे कठिन जीत अपने आप पर विजय पाना है। और जब हम स्वयं पर जीत हासिल कर लेते हैं तो भक्ति का मार्ग सुलभ होने लग जाता है और हमें मिलती है प्रभु कृपा। इसलिए इस प्रभु कृपा की प्राप्ति के लिए स्वयं पर जीत हासिल करें, अपने मन पर विजय हासिल करें, ताकि हमसे वो ईश्वर कभी दूर ना हो और हम सदैव उनका साक्षात्कार अपने मन के भीतर कर सकें।

मायावी भटकावे में आकर हम जीवन भर इधर उधर भटकते हैं और अंत में हमें पता चलता है कि हमारा सही पता ठिकाना तो वो ईश्वर है। इसलिए क्यों ना हम अपने सारे काम भुलाकर अपने मन को उस ईश्वर की ओर ले चलें, स्वयं को ईश्वर की शरण में भुला दें और मन से उस ईश्वर का ध्यान करें, मन से भक्ति करें उस ईश्वर की जो हमें सब कुछ देने वाला है, जो इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस बात को समझते हुए अपने मन से ईश्वर को याद करते हुए जुड़े रहें परमेश्वर के साथ।

ईश्वर की भक्ति का उजाला हमारे भीतर हो तो जीवन सार्थक लगने लगता है, अन्यथा जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो ईश्वर की कृपा से ये भक्ति, ये प्रकाश, ये पावनता हम सभी को मिलती रहे, और साथ ही हम सबसे इस जीवन में जो जाने अनजाने गलतियां, भूल, अपराध होते हैं, उन्हें ईश्वर क्षमा करे और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ अब मुझे यानी सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से। एक और इस कार्यक्रम के अंतिम भक्ति में प्रस्तुति, और उसके बाद होंगे समाचार, और समाचारों के बाद मैं आपसे मिलूंगा प्रोग्राम सदाबहार गीत में। तो बस आप जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो पर और सुनते रहिए ये प्रोग्राम जिसमें आप तक पहुंच रहा है आज की इस अंतिम भक्ति में प्रस्तुति का प्रसाद।

नमस्कार कानपुर, कैसे हैं आप सब। इस थोड़ी सी गर्म लेकिन जोश से भरी सुबह में मैं हूं आपका दोस्त आरजे सौरभ और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों, गर्मियों की सुबह का अपना अलग ही अंदाज होता है। सुबह की हल्की धूप, पेड़ों से आती ठंडी हवा, चाय की खुशबू और जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने का एहसास। ये मौसम भले ही गर्म हो लेकिन हमारे हौसले उससे भी ज्यादा गर्म होने चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भी कहीं ना कहीं गर्मियों के जैसे ही तो होती है। अगर धूप तेज है तो छांव ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, खुद एक पेड़ बन जाइए। आज की सुबह उन सभी मेहनतकश लोगों के नाम जो जल्दी उठकर अपने सपनों के लिए निकल पड़े हैं। जी हां, किसी की दुकान खुल चुकी है तो किसी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो कोई ऑफिस की तैयारी में लगा है, और हम यहां आपके साथ लेकर आए हैं ढेर सारी पॉजिटिव बातें, ताजा खबरें, मौसम का हाल, स्पोर्ट्स अपडेट, सेलिब्रिटी ट्यूट और आपके पसंदीदा सुपरहिट गाने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले एक घंटे तक ये सुबह सिर्फ होगी मस्ती, मोटिवेशन और शानदार म्यूजिक के नाम।

दोस्तों, सुबह की बेहतरीन शुरुआत के साथ शुरू हो चुका है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। पर प्रोग्राम में हम आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको बता दें हमारे उन प्रोग्राम्स के बारे में जो आज आप सुनेंगे ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर के संग पूरे दिन भर।

पुराने गानों की सुरमई पेशकश, सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सुबह 9 बजे हम आपको सुनवाएंगे एक विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। इस कार्यक्रम में सुनिएगा पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका और प्रसारक डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत। सुबह 9:45 पर हर रोज आप सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। जी हां, विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला विविधा, और विविधा में आज सजेगी महफिल। कव्वालियों की प्रोग्राम होगा महफिल कव्वाली।

आरजे लक्ष्मी रितेश। म्यूजिक आर प्रोग्राम होगा दिन में 3 बजे से और दिन में 3:45 पर हेल्थ मैगजीन। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अमितेश यादव से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत। बातचीत का विषय होगा चाइल्ड केयर ड्यूरिंग समर। और शाम 4 बजे से होंगे आप ही के फरमाइशी फिल्मी गाने आपकी पसंद प्रोग्राम में।

दोस्तों, सोशल मीडिया आज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आम जनमानस से लेकर सेलिब्रिटीज तक के दिलों की आवाज भी बन चुका है। तो चलिए जानते हैं आज कौन सा पोस्ट सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। कल 21 मई को गोरखपुर में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और अपने एक्स हैंडल पर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं व बधाई देते हुए लिखा, जिस देश का युवा सकारात्मक होता है उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के बाद कई बॉलीवुड सितारों ने भी विराट कोहली के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए हैं। रणवीर सिंह ने विराट की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दिस इज एवरीथिंग। वहीं विक्की कौशल ने पोस्ट किया, टू द मैन हु हैज गिवन एवरीथिंग टू द स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट आते हैं लेकिन कुछ शब्द सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं और यही तो असली ताकत है, एक पॉजिटिव मैसेज, एक इंस्पायरिंग थॉट और अपने चाहने वालों से जुड़ाव का।

दोस्तों कहते हैं हर दिन अपने साथ कुछ कहानियां लेकर आता है, कुछ प्रेरणा की, कुछ संघर्ष की और कुछ ऐतिहासिक पलों की जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी। तो चलिए अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट आज के इतिहास का, जहां हम जानेंगे कि आज यानी 22 मई के दिन भारत और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। आज ही के दिन सन 1545 में भारत के महान शासक शेर शाह सूरी की एक विस्फोट में मृत्यु हो गई थी। शेर शाह सूरी को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और सड़क निर्माण के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने ही जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को विकसित करवाया था। आज ही के दिन महान समाज सुधारक और आधुनिक भारत के अग्रदूत राजा राम मोहन राय का जन्म सन 1772 में हुआ था। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं की शिक्षा तथा अधिकारों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। आज के इस दिन से जुड़ी और भी खबरें हैं और भी इतिहास की कई वो बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन इस गाने के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग अनपुर प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, मैं हूं सौरभ आपके साथ। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे आज के इस दिन से जुड़े इतिहास की कुछ खास खबरों की। जी हां, आज ही के दिन सन 1984 में भारत की बछेंद्री पाल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्होंने इतिहास रच दिया। एवरेस्ट फतेह करने वाली वो देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आज 22 मई है और आज का दिन विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों, पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संरक्षण के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। आज का ये खास दिन हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन मानव अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है। तो दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ तारीखें याद नहीं कराता, बल्कि सिखाता है एक इंसान की ताकत, एक वैज्ञानिक की मेहनत और एक समाज सुधारक की सोच पूरे देश और दुनिया को बदल सकती है। याद रखिए, इतिहास हमेशा उन्हीं को बनाता है जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और अब इसी पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ते हैं अगले शानदार गीत की ओर।

ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, खास तौर पर कानपुर के यात्रियों के लिए। जी हाँ, कानपुर सेंट्रल पर शुरू हो चुकी है इकोनॉमी मील ट्रॉली सेवा। जी हाँ, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अब जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को सीधे उनके डिब्बों तक साफ पेयजल और भोजन की सुविधा भी मिलेगी। बीते दिन यानी गुरुवार को रेलवे प्रशासन और IRCTC की संयुक्त पहल के तहत इकोनॉमी मील मूवेबल ट्रॉली सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा का उद्देश्य सामान्य श्रेणी के यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक खान पान उपलब्ध कराना है। सेवा का शुभारंभ करते हुए अधिकारियों ने यह भी बताया कि अब यात्रियों को खाने पीने की सामग्री लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रॉली के जरिए खाद्य सामग्री और पेयजल सीधे कोच तक पहुंचाया जाएगा। रेलवे प्रशासन के मुताबिक इस सुविधा से सबसे ज्यादा फायदा जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को होगा। ट्रॉली सेवा के जरिए स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खानपान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिल सके।

दोस्तों आपको बता दें, घर घर जनगणना अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। जी हां, 22 मई से 20 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत 12,000 गणना कार्मिक शहर के घरों तक पहुंचकर नागरिकों से 33 प्रकार की जानकारियां जुटाएंगे। प्रत्येक गणना कर्मी को लगभग 150 परिवारों के सर्वे निर्धारित समय में पूरे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनगणना विभाग के अनुसार 7 मई से शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया बीते कल यानी गुरुवार रात 12 बजे समाप्त हो गई है। इस दौरान शहर के 53,000 नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराई है। अब प्रगणक मोहल्लों, गांवों और वार्डों में जाकर परिवारों से संबंधित विवरण एकत्रित करेंगे और अभियान के दौरान प्रत्येक भवन को एक यूनिक नंबर भी आवंटित किया जाएगा। पूरे जनपद में लगभग 10,621 प्रगणक एवं सुपरवाइजर तैनात

किए गए हैं जो इस जनगणना को अंजाम देंगे। हम आपको ये भी बता दें कि जिन नागरिकों ने पहले सौ गणना की है वे प्रगणक के घर पहुंचने पर अपना 11 अंकों का सेल्फ एन्यूमरेशन नंबर उन्हें उपलब्ध करा दें ताकि विवरण के सत्यापन में सुविधा हो सके। साथ ही साथ साइबर ठगी से भी सतर्क रहने की हम आपको सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जनगणना के नाम पर कोई भी व्यक्ति आपसे अगर बैंक खाते, ATM या OTP या अन्य वित्तीय जानकारी मांगता है तो ये संदेहास्पद है। इस तरह की जानकारी मांगने पर आप तुरंत सतर्क हो जाएं।

दोस्तों इस गीत के साथ ही अब आज का गुड मॉर्निंग कानपुर समाप्त करने के दीजिए अपने दोस्त सौरभ को इजाजत इसी वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। कहीं जाइएगा नहीं, देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी फरहतनाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म हत्या

0: मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से

0: यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक

0: की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad.

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं सौरभ। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और बाबला के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है चांदनी। गीत कबूल के आनंद बख्शी ने, संगीत शिव हरि का है।

कार्यक्रम का अगला गीत पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अजीज कैसरी के लिखे बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है दयावान।

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में दीवाना फिल्म का गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

एक दूजे के लिए। ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ यह गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम के आखिर में अब आपको सुनवा रहे हैं बाहर आने तक फिल्म का गीत मंगल सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने।

अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह के गाए इस गीत के साथ ही आज का सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम समाप्त होता है। कहीं जाइएगा नहीं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ हाजिर हो रहे हैं इस अंतराल के बाद।

0: 102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर के अवसर पर प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल।

0: आज के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आकाशवाणी कानपुर की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका और प्रसारक डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत।
1: सभी सुनने वालों को मेरा यानी दीपशिखा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष का जश्न मनाना हम शुरू कर चुके हैं और आज इसी क्रम में हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में हमारी वरिष्ठ प्रसारक डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र जी को, जिनको आप न जाने कितने सालों में सुनते आए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम जैसे कि तू तू मैं

0: मैं एक चतुर नार, हेलो कानपुर, आपकी पसंद और भी ना जाने कितने कार्यक्रम। तो आज बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र का एक बार फिर से आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
1: सभी सुनने वालों को गरिमा शैलेंद्र का नमस्कार। धन्यवाद आपका कि आपने हमें याद किया। इस आकाशवाणी के 90 साल सफर में चल रहे हैं, हम अभी भी सफर में हैं। स्टूडियो देखकर दीपशिखा जी मुझे याद आ रहा है, वही स्टूडियो है, वही माइक है, वही दम खम है। ना तुम हो, ना मैं हूँ, बस हम हैं।
0: ना तुम हो, ना मैं हूँ, बस हम हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने गरिमा जी। और इसी के साथ हम सब जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी में आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई, आपकी जुबानी, आपकी कहानी।
1: दीपशिखा जी, इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है जो अभी भी बदस्तूर जारी है। ये कहानी बात शुरू होती है जब मैंने आकाशवाणी संस्था को ज्वाइन किया था।
0: जी,
1: वर्ष 1988 का था और मेरा चयन हो गया था PCS में। साथ साथ आकाशवाणी में भी चूंकि शौक था सुनने का, रेडियो सुनने का शौक था, इसलिए आकाशवाणी की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया था मैंने। तो यहाँ से हमें सूचना मिली कि आपकी लिखित परीक्षा फला तारीख को है। तो लिखित परीक्षा में चूंकि तैयारी पूरी थी तो पिताजी ने कहा कि तुमको ज़रूर देना चाहिए। तो लिखित परीक्षा में शामिल हो गई और वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। उसमें से 50% लोग ऐसे थे जो आकाशवाणी में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे पहले से और संस्था के बारे में जानते थे, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था आकाशवाणी के बारे में। लिखित परीक्षा हुई और सफल रही। उसमें जब सफलता मिल गई तो घोषक के पद के लिए 3 परीक्षाएं पास करना आपको ज़रूरी होता है। तो पहली लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका ऑडिशन माने स्वर परीक्षा होती है। आपकी आवाज़ कैसी है, आपका उच्चारण कैसा है। चूंकि आपको सिर्फ हिंदी ही नहीं और भी बोलियां जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, जो प्रांतीय आंचलिक बोलियां हैं, स्थानीय बोलियां हैं, उनकी भी जानकारी आपको कितनी है कि नहीं, इस बात की भी उसमें परीक्षा होती है। एक बाकायदा पेपर तैयार किया जाता है जो दिया जाता है ऑडिशन परीक्षा के लिए। आपको उसको पूरा बोलना पड़ता है, पढ़ के सुनाना पड़ता है और उसमें कई भाषाओं के शब्द होते हैं, कुछ वाक्यांश होते हैं, कुछ पद्यांश होते हैं जो आपको पढ़ के सुनाने पड़ते हैं। उससे आपकी शैली, आपका उच्चारण, आपका स्वर, आपका मॉड्यूलेशन, स्वर का उतार चढ़ाव, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो स्वर परीक्षा के बाद, स्वर परीक्षा में जब आप पास हो जाते हैं, फिर आपको साक्षात्कार का मौका दिया जाता है। साक्षात्कार में आकाशवाणी के मूर्धन्य विद्वान, जाने माने जो उच्च पदों पर रहे हुए लोग होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो सभी अलग अलग फील्ड से शामिल होते हैं। तो इस तरह साक्षात्कार तक पहुंच गई मैं और साक्षात्कार हुआ। काफ़ी लोग थे उस समय, कुछ तो अच्छे कवि थे, कुछ हिंदी के साहित्यकार श्रेष्ठ थे, हमारे आकाशवाणी केंद्र के निदेशक महोदय, तो उन्होंने भी उसमें पैनल में बैठे वो, और करीब 6-7 लोगों का पैनल था। इस तरह से साक्षात्कार हुआ और बहुत बढ़िया हुआ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा साक्षात्कार हुआ, क्योंकि मन खुश था कि अच्छे सवाल किए और भरपूर खुले दिल से जवाब दिए गए उसके। तो इस तरह साक्षात्कार संपन्न हुआ और उसके बाद तब कि सीधे आपको जो परिणाम होता था वो आपके घर डाक द्वारा जाता था। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कि ना ठीक है, आपने अपना काम कर लिया है, बाप इंतज़ार कीजिए। करीब 3 महीने के बाद घर पर डाक से एक पत्र पहुंचा जिसमें लिखा हुआ था कि आपको चुन लिया गया है और आप फला तारीख तक केंद्र पर ज्वाइनिंग के लिए आ जाएं। तो ये आकस्मिक रूप से ये सूचना मिली। हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं जाना चाहिए, आए तो निदेशक महोदय ने कहा नहीं आप ज्वाइन कीजिए। बस ज्वाइन किया और सफ़र शुरू हो गया। तो इस तरह से काम चल पड़ा और संस्था के बारे में हमारे जो पुराने जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, दिखाया कि ये ऐसी परिचय कराया कि ये स्टूडियो है, ये माइक है। उससे पहले माइक पर बोलने का कोई अभ्यास नहीं था, कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, बिल्कुल उंगली पकड़कर

0: खाना जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई।
1: गरिमा जी, आपके शुरुआत का ये सफ़र जानकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम के अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल अभी श्रोताओं को अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप सुनवा दें और ये भी बताएं कि ये गीत आपको पसंद क्यों है।
0: अपनी पसंद का गाना, बहुत सारे गाने पसंद हैं, लेकिन पहला गाना कौन सा हो, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पहला गाना कौन सा सुनवाया जाए। एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ

0: करिमा जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनकर एक बार वापस आ चुके हैं आकाशवाणी कानपुर के अपने स्टूडियो में। आपने बताया कि कैसे आकाशवाणी में आपके सफ़र की शुरुआत हुई, और आगे हम जानना चाहेंगे कि ये सफ़र धीरे धीरे परवान कैसे चढ़ा, तो क्या रही इसके आगे की कहानी।
1: वरिष्ठ उद्घोषक थे जितेंद्र कुमार जी, और सुधा रानी जी, तो उनके सुपुर्द कर दिया गया था हमें कि आप इनसे सीखिए। तो पहला जो अनाउंसमेंट था, नहीं, केंद्र परिचय कैसे दिया जाता है वो

0: वो केंद्र परिचय कौन सा था ये हम आपको बताते हैं।
1: जी
0: प्रसारण हमारा मीडियम वेव पर चलता था और पहला जो केंद्र परिचय था, पहला अनाउंसमेंट था, वो था मीडियम वेव 207.04 मीटर यानी 1449 किलोहर्ट्ज़ पर। ये विज्ञापन प्रसारण सेवा का कानपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पेशे खिदमत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कुछ इस तरह की पहली उद्घोषणा हमारी हुई। सुबह आरंभिक उद्घोषणा के बाद चिंतन वंदनवार, देशगान, फिर भूले बिसरे गीत। अभी भी वो कार्यक्रम है। उस जमाने में भूले बिसरे गीत में हम वो गाने सुना करते थे जिनके नाम अब सुनते हैं कि जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो जब प्लेबैक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी तब जो हीरोइन थी, जो नायिका थी, अगर वो गा सकती थी तभी वो एक्टिंग भी कर पाती थी। अगर वो गा नहीं सकती थी तो उसको फिल्मों में मौका नहीं मिलता था। तो शुरुआत में ऐसे ही लोग आए जो गा सकते थे, तो उनकी आवाज़ों में भी गाने हमारे पास थे, लाइब्रेरी में सुरक्षित थे। और स्टूडियो में जो मशीनें थीं, आपको बताना चाहेंगे कि वो मशीनें तो अब कहीं दिखाई नहीं देती, चूंकि तकनीक जिस तरह से आधुनिक होती चली गई तो अब सारा काम कंप्यूटर ने ले लिया, उसी पर हम सब काम करते हैं। अब तो रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग, मिक्सिंग सब कुछ उसमें हो जाता है। उस समय मेल्ट्रॉन की बड़ी बड़ी मशीनें, टेप डेक्स हुआ करते थे। टेप शायद आपने देखे हो, पुराने
1: जी
0: टेप स्पूल पे चरखी की तरह लगाए जाते थे दोनों तरफ और वो चला करते थे। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी। लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स हुआ करते थे जो हम 33, 33.5 RPM पर चलाते थे। कुछ EPs हुआ करते थे, माने जो लॉन्ग प्ले LP रिकॉर्ड से थोड़े छोटे हुआ करते थे। सबकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता था, नहीं तो अगर ज़रा सी भी मिसहैंडलिंग हो गई तो वो जो उसकी सुई थी वो सड़क के पीछे आ जाती थी और आपको जैसे ट्रैक बैक के रूप में सुनाई दी। मैंने प्यार किया, हाय मैंने प्यार किया, आगे का क्या है, तो हाय मैंने प्यार किया। अब अनाउंसर इतना बिजी होता था अगले गाना जो बजना है उसको क्यू करने में, क्यों, चूंकि दो टर्न टेबल हमारे पास है, रिकॉर्ड प्लेयर है, एक रिकॉर्ड प्लेयर पर पहला गाना चल रहा है जो प्रसारित हो रहा है, तब तक अगला गाना जो क्यू में है उसको आप सेट कर रहे हैं, तो आप अक्सर सुन नहीं पाते थे कि ट्रैक बैक आ रहा है। उसके लिए जो प्रसारण अधिशासी हमारा ड्यूटी रूम में रहता था उसकी सुनने की ही ड्यूटी थी कि क्या चल रहा है स्टूडियो से, जो प्रसारण हो रहा है वो सुने। तो बड़ी तगड़ी ड्यूटी ये भी होती थी कि आपकी ऐसे तो नहीं कि कोई स्टूडियो में मशीन खुला रह गया हो, कोई टेप चालू रह गया हो, उससे कुछ आवाज़ चली जाए गाने के बीच में तो वो उठ के तुरंत आए या बजर दे हमें, तो उसको उठ के आना पड़ता था कई बार कि देखिए ये ट्रैक बैक जा रहा है, इसको रोकिए, और तुरंत आपको क्षमा मांगनी पड़ती थी अपने श्रोताओं से, क्षमा कीजिएगा इस गाने को हम दोबारा आपको सुनवाते हैं, तकनीकी खराबी के कारण आप हमारा ये गीत सुचारू रूप से नहीं सुन सके। लेकिन अगर आपने क्षमा नहीं मांगी तो श्रोता आपको माफ़ नहीं करते थे। जो कुछ आप बोल रहे हैं और सुनने वाले को आपने ठीक से समझाया नहीं तो वो आपत्ति कर सकता है कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो आपको पहले उसको रोकना पड़ता था, उसके बाद दूसरा जो क्यों किया, उस समय आपको क्या चल रहा, दिमाग में क्या चल रहा होता है। आपके सामने आपकी स्क्रिप्ट रखी हुई है लेकिन स्क्रिप्ट को आपको किस तरह पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, स्क्रिप्ट तो सामने इसलिए स्क्रिप्ट रखी हुई है, जो कुछ चूक बिना लिखे आपको पता नहीं है कि किस समय टाइम का इतना बाउंडेशन है कि 5 मिनट का कार्यक्रम है तो 5 मिनट में आपको 20-30 सेकंड पहले ही ख़त्म करना है। कमर्शियल ब्रेक्स हुआ करते थे, कमर्शियल ब्रेक में 5 मिनट का आपका विज्ञापन जाने हैं, मान लीजिए 30-30 सेकंड के विज्ञापन लगे हुए हैं, 2-2.5 मिनट तक आपके विज्ञापन बजने हैं, तो 1, 2, 3, 4 टेप्स हुआ करते थे, एक साथ 4-5 टेप को आपको सिर्फ 2 मशीनों में लगाना है, तो आपको खड़े हो के सारे स्पूल पे उन पर फ्लैग लगाकर क्यू करके टेप पर रखना पड़ता था कि एक मशीन से विज्ञापन जो प्रसारित हो रहा है उसके तत्काल बाद दूसरा विज्ञापन प्रसारित होगा, तो हाथ पे लेके खड़ा होना पड़ता था। पहले सुबह की जो शिफ्ट होती थी और शाम की शिफ्ट में दो अनाउंसर इसीलिए हुआ करते थे कि एक तो प्रसारण कर रहा है, कम से कम एक सामग्री संकलन ठीक से करे, जो कुछ भी टेप्स है, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स है, ईपीज है, उनको ठीक से रखे और उनका संकलन सही करे और वो बताता जाए। अगर कोई भी दुश्वारी आ जाती है वहाँ पे, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको हैंडल करने में आपकी मदद करे। यानी एक हॉट सीट हुआ करती थी जब आप माइक के सामने बैठे हैं, उद्घोषक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आप तमाम सारी जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं और उन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाना है, फ्री होके काम करना है, बोलना है फ्री होके। अगर आपने थोड़ा सा भी दबाव महसूस किया तो वो बात आपके बोलने में आ सकती है। तो इतनी आपको तैयारी करके रखनी पड़ती है और एकदम बिंदास माइक ऑन हुआ और आप ऑन हो गए। तो ऐसी उस समय व्यवस्था थी। उस समय आकाशवाणी का इतना क्रेज़ था कि और कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास। दूरदर्शन तो बहुत बाद में आया, और जब आया तो भी क्या रेडियो का स्थान कोई और चीज़ ले सकती है क्या?
1: रेडियो का स्थान तो आज भी कोई और नहीं ले पाया।
0: हाँ, नहीं ले सकता, क्योंकि सदियों पुरानी बात है, हजारों हजार साल पहले कहना था, सुनना था और फिर याद रखना था। तो ये जो कहने, सुनने और याद रखने की जो परंपरा थी, जो ऋषियों ने निभाई, अब क्या उसके बाद फिर क्या हुआ कि कैसे निभाए, ये रेडियो ने शुरू किया। रेडियो ने कहा, सुना और फिर याद रखा, फिर कहा, फिर सुना, फिर याद, आज तक ये परंपरा चल रही है। तो अगर कोई ये कहे कि रेडियो ख़त्म हो जाएगा, कभी रेडियो कभी ख़त्म हो सकता है, तो ये सब सिर्फ लोग इसलिए कहते हैं कि और सारे विकल्प उनके पास अब मौजूद हैं, सोशल मीडिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी लोग सुनने में जो सुकून महसूस करते हैं वो देखने में नहीं करते या किसी और विधा में नहीं करते। तो रेडियो हमेशा से रहा है और रेडियो हमेशा रहेगा
1: जी। और आजकल तो कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट, इन सब के माध्यम से भी रेडियो कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में अपनी जगह बनाए हुए है। प्रसारण के चैलेंजेस के बारे में आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, और ये जानकर भी बड़ा खुश है कि देख रहे हैं आजकल कि कंप्यूटर्स का आगमन हो गया है, अच्छे अच्छे कंसोल्स का आगमन हो गया है हमारे स्टूडियोज़ में, जिसके कारण प्रसारण बहुत हद तक सरल भी हो गया है। और सरल हमारी ये बातचीत भी रहेगी आगे ही ऐसे ही, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का एक और गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: दीपशिखा जी, जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, बताया साल था 1988
1: जी,
0: 88-89 के बीच एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था मैंने प्यार किया। उसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, आते जाते हंसते गाते, ये गाना आप ज़रूर सुनाएं श्रोताओं को।

0: बड़ा ही खूबसूरत सा ये गीत सुना हमने अभी, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया। और ये गीत सुनने के बाद एक बार वापस लौट चुके हैं आकाशवाणी कानपुर के अपने स्टूडियो में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अपनी पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका और प्रसारक डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र से। अवसर है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का, और गरिमा जी, आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी एक विशेष शैली डेवलप की, कैसे ये अंदाज डेवलप किया जिसके माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। साथ ही चाहेंगे कि उन कार्यक्रमों के विषय में भी बताएं जिन्होंने आपको बहुत लोकप्रियता दिलवाई।
1: दीपशिखा जी, अभी तक हमने आपको ये बताया कि उस समय की जो व्यवस्था थी
0: जी।
1: जो मशीनें थी हमारे सामने, सिर्फ आवाज आपके पास हो उससे काम नहीं चलता, आवाज के साथ आपकी को अपनी शैली, अपना अंदाज भी बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को कॉपी कर लिया, किसी की नकल करने से आपकी पहचान नहीं बनती, क्योंकि जिसने वो अपना अंदाज बनाया, जिसने अपनी शैली, अपना स्टाइल डेवलप किया, वो तो उसकी पहचान बन गई। अगर आप उसी अंदाज को, उसी शैली को कॉपी करते हैं तो आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। आपने खुद अपना क्या दिया? आपने कुछ नहीं दिया, आपने उनको नकल कर लिया। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, आपके अंदर उसकी वो शैली, वो अंदाज उतर जाता है, तो आप चाह कर भी जब भी आप शुरुआत करेंगे कुछ भी कहने सुनने की, तो वो अंदाज आप पर हावी हो जाता है। लेकिन उस शैली को बनाने के लिए आपको कुछ नया सोचना पड़ता है, उस पर बहुत काम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, चारण को ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो की लेखन शैली भी अलग है, जो आप किताबें पढ़ते हैं और किताबों में जिस तरह की शैली होती है वो लेखन शैली होती है। मतलब ये कि जो लेखक ने लिखा वो पाठकों के लिए लिखा, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, उसकी समझ में आ रहा है। लेकिन जो रेडियो पर है वो आप बोल रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं अगला सुन रहा है, जो श्रोता है आपको वो सुन रहा है, उसके कानों के थ्रू जा रहा है उसके अंदर। तो जैसे यह, वह, ये सब चीज़ें रेडियो के लेखन में नहीं आती, रेडियो की लेखन शैली अलग तरह की होती है। तो आप सबसे पहले आप यह को ये कहिए और वह को वो लिखिए। आप संबोधन कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे आपने कहा ख्वातीनों हजरात, ऐसे नहीं बोलना है, आपको किस तरह से बोलना है, दोस्तों, मित्रों, बहुवचन नहीं लगाना है। तो ये सब चीज़ों का जब आप रेडियो के नॉर्म्स पढ़ते हैं कि हाँ हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस संबंध में भी बहुत सारी वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं कराई जाती हैं और बड़े माननीय लोग आते हैं जो आपको सिखाते हैं कि ऐसा करिए, वैसा करिए। आप किताबों को तो थोड़ा अलग कर दीजिए, क्योंकि आपने बेसिक्स सारे किताबों से लिए, सारे तथ्य आपने किताबों से पढ़े, लेकिन यहाँ तो आकर आपको अपनी शैली बनानी पड़ेगी। आपको रेडियो के लिए लिखना है तो रेडियो की शैली अपनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपना लेखन सुधारिए कि आपको रेडियो के लिए लिखना है, आपको किस प्रोग्राम के लिए लिखना है, उसका स्वरूप जानिए कि आपको फिल्मी गीतों का कोई कार्यक्रम पेश करना है तो आपको फिल्म संगीत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप संगीतकार कौन है, गायक कौन है, गीत किसने लिखा है, गीत के बोल कैसे हैं, ये सारी जानकारी। और इसमें जब आपकी उद्घोषक के पद की जो अर्हताएं निकलती है, मतलब योग्यता क्या

0: होने चाहिए उसमें ये रहता है कि अगर आप साहित्य, संगीत, थिएटर वगैरह से जुड़े हैं तो आपको आसानी होगी यहाँ काम करने में, क्योंकि आपको उस शैली से परिचित है, बोल सकते हैं थिएटर में, माइक पर बोल सकते हैं, तो आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान है, तो आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ आके उन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखा, जैसे कि उच्चारण स्थान, ऐसे आपने कहा कि आपने शैली कैसे अपनी विकसित की, शैली विकसित की अपनी पहचान बनाने के लिए। पहचान का तो इतना नहीं सोचकर बनाया गया था, लेकिन जैसे जो हमारे वरिष्ठ थे वो जिस तरह से कहते थे, सुधा जी का प्यार भरा नमस्कार, तो ये लगता था कि अगर हम भी प्यार भरा नमस्कार कहेंगे तो सुधा जी तो नाराज हो जाएंगी कि मेरी शैली आपने चुरा ली, वरिष्ठ है आखिर। तो ये हमें नहीं करना है, हमें अपना अलग कुछ बनाना पड़ेगा संबोधन के लिए। तो ठीक है, भी हम बना लेते हैं। जब प्रोग्राम शुरू हुआ, गरिमा शैलेंद्र का नमस्कार, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम, ऐसे शुरुआत हुई। लेकिन जब हेलो कानपुर वगैरह या छाया गीत या आपकी फरमाइश जैसे कार्यक्रम हुए, तो जैसे कार्यक्रम का स्वरूप हुआ उस तरह से शैली, उस तरह से उसका अनाउंसमेंट भी हुआ, उस तरह से उसका परिचय भी दिया गया। तो कुछ एक अनाउंसमेंट्स, कुछ एक जो शैलियाँ थी जो विभिन्न कार्यक्रमों का स्वरूप बतलाती थी, मतलब बाद में वो पहचान बनी हमारी, वो ज़रूर हम आपको बताना चाहेंगे, यानी सुनाना चाहेंगे। जैसे कि हेलो कानपुर 2003 में शुरू हुआ यहाँ पर, तब ये 1996 में विविध भारती मुंबई से शुरू हुआ था, जो बहुत लोकप्रिय हो रहा था। चूंकि श्रोता सारे चिट्ठियों के माध्यम से तो हमें आपकी फरमाइश वो भेजते ही थे, लेकिन बात नहीं कर पाते थे। अपनी बात कहना एक अलग बात होती है ना, कि आपने अपने दिल की बात कह दी और हम तक वो बात पहुंच गई, फिर आपने उसका उत्तर हमें दिया, हम सुन सकें कि हमने क्या बोला और हमारे कैसी लग रही है आवाज़ सुनने में, और जो आपके यार दोस्त हैं, परिचित हैं, वो भी सुन रहे हैं, वहाँ उन तक भी आपकी आवाज़ पहुँच रही है, ये भी क्रेज़ होता था। तो सबसे पहले इसका हमने जो इसका परिचय, मतलब एक उद्घोषणा तैयार की, किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए श्रोताओं को। जैसे कि मई का महीना चल रहा है, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। आज है मई 2026 का तीसरा रविवार, हेलो कानपुर के सुनने वालों को गरिमा शैलेंद्र का नमस्कार। खेत हो, खलिहान हो, दुकान हो, मकान हो, भीड़ हो, सुनसान हो, इस वक्त आप हो जहां कहीं, अपने रेडियो की आवाज बढ़ा लीजिए वहीं, क्योंकि ध्वनि तरंगों पर होकर सवार आप तक आ रही है आपके पसंदीदा गीतों की बहार। तो इस तरह ये हमने शुरुआत कर दी, तो एक परिचय भी हो गया, कार्यक्रम का भी परिचय हो गया, और ये भी पता चल गया श्रोताओं को कि ये आज क्या है, कौन सा दिन है, कौन सा ईयर है ना। और ये भी हो गया कि जहाँ कहीं हो श्रोता, वहां पर भी वो ट्यून कर सकते हैं अपना रेडियो और सुन सकते हैं कार्यक्रम। समय हो गया एक तरह से, जैसे वो हुआ करती थी ना, डुगडुगी बजाई जाती थी कि नहीं नहीं ये आइए आइए आइए, इस तरह का ये हो गया। तो जब शुरुआत हो गई, कार्यक्रम की उद्घोषणा हो गई, शुरू हो गया, इसके बाद इसकी एक संकेत ध्वनि भी तैयार करनी पड़ती है कि कार्यक्रम जब शुरू हो रहा है तो किस संकेत से पहचाना जाए, ध्वनि कौन सी आएगी इसके साथ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रमों में संकेत ध्वनि है, हवा महल में भी है और
1: जयमाला में भी,
0: जयमाला में भी है,
1: सखी सहेली में
0: सखी
1: भी।
0: सहेली में है, और वंदनवार में भी है। हाँ, वंदनवार संगीत सरिता में है, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो संकेत ध्वनि से शुरू होते हैं, जो उनकी पहचान है कि अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और संकेत ध्वनि से लोग पहचान जाते थे कि ये कार्यक्रम अब आ रहा है, तो जिनको सुनना है वो सजग हो गए, उनके कान खड़े हो गए, अब कार्यक्रम सुनना है। इसी तरह हेलो कानपुर की भी सिग्नेचर ट्यून तय की गई और उसको वो लगाया गया, इसके साथ ये अनाउंसमेंट हुआ और बाद में जाके ये विकसित हो गया, ये पहचान बन गई धीरे धीरे। फिर ये कि भाई ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि पहले एक दिन ही शुरू हुआ, फिर हफ्ते में 3 दिन होता था, और इसकी स्पॉन्सरशिप भी हमें बहुत मिली इस कार्यक्रम के लिए, माने ब्रांड जो है तो अपनी पब्लिसिटी के लिए हमें कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने लगे। तो इस तरह से हमारा जो रेवेन्यू था वो भी बढ़ने लगा, तो कार्यक्रम की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई, इस तरह ये हेलो कानपुर की प्रतिष्ठा हो गई, जो आज तक चल रहा है और आपको भी

0: एक दशक से ज़्यादा हो गया
1: जी
0: इस संस्था को ज्वाइन किए हुए, आपने क्या महसूस किया? हम जिन्हों ये जो पुरानी बातें हैं हमने तो आपको बताई, आपने इन 10 सालों में क्या महसूस किया? कि शुरू शुरू में तो ये लगा होगा कि कहाँ ऐसा है, चूंकि उस समय एक डाउनफॉल सा चल रहा था, कि संस्था का डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे भाई नए लोग आए, नए लोगों ने उसको धीरे से ऊपर उठाया और अब तो चल निकला है। आप बताइए अपना एक्सपीरियंस।
1: जी बिल्कुल गरिमा जी, आज आकाशवाणी के 90 वर्षों का जश्न हम मना रहे हैं आपके साथ आकाशवाणी कानपुर के अपने स्टूडियो में, और इतनी सारी बातें करी आज आपके साथ, आपने इतने सारे अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए जिन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा, और पता चला कि प्रसारण एक ऐसी विधा है जो कि निरंतर डेवलप होती रही है, निरंतर इवॉल्व होती रही है। और अगर अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस के बारे में, अनुभव के बारे में बोलना हो, तो मैं यही कहूँगी कि एक बड़े ही मशहूर कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के, घनानंद जी, उन्होंने लिखा था कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मोरे कवित्त बनावत। यानी कि लोग लगे हैं कविता की रचना करने में, लेकिन मुझे तो स्वयं मेरी कविताएं ही बना रही हैं। तो बस यही अनुभव हुआ मुझे, इतने सारे कार्यक्रम यहाँ पर प्रेजेंट किए, प्रस्तुत किए, इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रमों में सहयोग किया, पूरी एक सीरीज चलाई मैंने अपने कार्यक्रमों की यहाँ पर, स्वास्थ्य चेतना की, हेल्थ मैगजीन की, और इन सब कार्यक्रमों को करके कहीं ना कहीं यही अनुभव हुआ कि बहुत कुछ सीखा, रेडियो ने बहुत कुछ दिया है, और प्रसारण को हमेशा एक काम न समझ कर एक पूजा की तरह समझा है, एक उपासना की तरह समझा है हमने। इसीलिए आज आकाशवाणी के 90 वर्षों का जश्न जब मना रहे हैं, तो एक बहुत ही गर्व की भी अनुभूति है, जैसा कि आपने कहा कि इतना विशाल, वृहद और एक गौरवमयी इतिहास वाला ये संस्थान है, जिससे जुड़े होना स्वयं अपने आप में एक गर्व की अनुभूति देता है। और आज तो खैर बातचीत का मुख्य विषय ही है आपसे मुलाकात, आपसे बातचीत, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रसारण का जो नया स्वरूप है, हम लोगों ने इतने सारे कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ किए हैं, आपको कैसा लगता है ये सब बदला हुआ स्वरूप देखकर?
0: दीपशिखा जी, प्रसारण का आज का रूप भी आप लोगों ने जो कुछ आगे बढ़ाया है इसको अपने प्रयासों से या अपने पुरखों से, पहले वालों से सीखा तो उन्हीं से है, जैसे हम लोगों
1: जी
0: ने सीखा था।
1: बिल्कुल
0: ये परंपरा तो हमेशा चलती रहेगी। पहले वालों से सीखा और खुद समझा, उसको आगे बढ़ाया और उसको अगली पीढ़ी को दे दिया, यही हम लोगों ने किया। जैसा आपने बताया कि हम बताएं कि कैसा लग रहा है, वास्तव में यही होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी समीक्षा हम क्या करें, दूसरा कोई करे, तो समझ में आता है कि
1: बिल्कुल
0: आपने कैसा किया है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। एक गाना दीपशिखा जी याद इसलिए आ रहा है, वो सुनवाना चाहूंगी मैं। सज्जू रानी फिल्म का गाना है। जब विवाह होने वाला था मेरा, शादी होने वाली थी, तो मेरे पति, भावी पति, उस समय तो भावी ही हुआ
1: जी
0: करते थे उन्होंने फरमाइश की थी एक गाने की, सैया के गांव में तारों की छांव में बन के दुल्हनिया जाऊंगी। बहुत खोजा गया ये गाना, नहीं मिला लाइब्रेरी में, तो उस समय ये गाना हम उनको नहीं सुनवा पाए। तो चलिए, उस समय की जो क्षतिपूर्ति है वो आज हम कर देते हैं, गाना सुनवाते हैं सज्जू रानी फिल्म से, यही वाला।

0: गरिमा जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनकर वापस आ चुके हैं हम अपने कार्यक्रम में, और चलते चलते हम चाहेंगे कि आपका एक बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम आकाशवाणी के कानपुर केंद्र से चला, बड़े लंबे समय तक चला, जिसका नाम था तू तू मैं, और हास्य रस में डूबा हुआ ये कार्यक्रम था। इसके पीछे क्या सोच थी आपकी, कैसे प्रस्तुतिकरण किया गया इसका, हम जानना चाहेंगे।
1: हाँ, अच्छी याद दिलाई दीपशिखा जी आपने। कार्यक्रम आया और फिर उसकी रूपरेखा सोची गई कि इसको सास बहू दो पात्र हैं, और चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र बहुत कवर करते हैं, गांव बहुत सारे गांव आते हैं हमारे इस रेडियो के श्रोता क्षेत्र में, जहाँ जहाँ हमारे कार्यक्रम सुने जाते हैं, तो क्यों ना इसको लोकल डायलेक्ट में, जो स्थानीय बोली है, उसमें किया जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि इसकी स्क्रिप्ट तैयार इस तरह ना की जाए, बल्कि इस तरह हम सोचें कि जो हमारी करंट अफेयर्स हैं, जो समस्या चल रही है, तत्काल की समस्या जो चल रही है, आजकल की जो चल रही है, उस समस्या को उठा के उस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सास बहू पात्र रहेंगे, मुख्य पात्र वो रहेंगे, और साथ में समस्या का जिक्र होगा, कुछ संगीत का तड़का लगेगा उसमें, और स्थानीय बोली रहेगी। ये चार चीज़ें हमने, चार पॉइंट बना लिए उस कार्यक्रम के। सास का रोल हमने प्ले किया, और बहुएं हमारी दो और घोषक बनी, और जिस जिस तरह से जो पात्र की ज़रूरत होती थी, हम उन्हीं में से कोई ना कोई एक ढूंढ लिया करते थे। जैसे अभी सिलेंडर की समस्या चल रही है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उस समय भी ऐसा होता था कि बरसात के समय सिलेंडरों की जो सप्लाई होती थी, डिलीवरी होती थी, उसमें बहुत टाइम लग जाता था। तो इस तरह की समस्याएँ लेकर उसको शुरू किया गया, और कार्यक्रम एक दो एपिसोड के बाद पता चला कि नहीं, इसकी लिसनिंग बहुत हो रही है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि 1,000 चिट्ठियाँ आ जाती थी। साप्ताहिक कार्यक्रम था, और लोग कहते थे कि इसको आधे घंटे का समय बढ़ाकर 1 घंटा कर दीजिए। तो कार्यक्रम शुरू होता था, सब सास बहुअन का और उनके बउआ लोगन का हमार प्यार भरी के प्रणाम, कहो कैसे हो आप लोग, अच्छे है हुई हो। आजकल तो भाई सिलेंडर की बहुत मारा मारी चल रही है। आओ बहुरियो आओ, सब श्रोता आगे हैं हमार, नमस्ते करो और बताओ कि घर में का हो ही रहा है भाई। तो इस तरह शुरू हो गया कार्यक्रम। उसके बाद समस्या शुरू हो गई, और फिर सास बहू की हल्की सी नोक झोंक हो गई, फिर जो समस्या उसका जिक्र हो

0: गया, कुछ गीत संगीत हो गया और बहुत भर भर के प्यार दिया। इतना अच्छा कार्यक्रम था और मैं तो आपसे भी कहूँगी कि इस तरह का कोई कार्यक्रम, चूँकि अब प्रसारण का समय भी बढ़ गया है, आपको स्थानीय समय आपके पास है, फिर से शुरू करें, बड़ा मज़ा आएगा सच में।
1: जी बिल्कुल, आपके सुझाव का हम ख्याल रखेंगे और ख्याल थोड़ा समय का भी रखना होगा क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं समय समाप्त होने का। लेकिन चलते चलते हम चाहेंगे कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हमारे सभी श्रोताओं को कुछ संदेश दें आप अपनी तरफ से।
0: श्रोताओं को यही संदेश है कि हमने 90 साल का सफ़र तय किया है। सोशल मीडिया में इतने सारे आपके पास विकल्प हैं, उसमें भी रेडियो ही ढूंढकर लोग सुनते हैं।
1: जी
0: क्यों? कि सुनने में बहुत सुकून है जो देखने में नहीं है। आप काम करते हुए सुन के अगर काम कर रहे हैं, सुनते हुए अगर कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बाधा नहीं देता और आपके दिमाग को बहुत शांत रखता है और जानकारियां कानों में पड़ती रहती हैं। संगीत के माध्यम से आपका दिमाग बहुत शांत रहता है, तो हमें नहीं लगता कि रेडियो कभी समाप्त होगा। जैसा कि हमने पहले कहा था कि कहकर सुना, सुनकर कहा और फिर स्मृति में रखा, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये चलता ही रहेगा। और ये डिपेंड करता है हमारी अगली पीढ़ी पर कि वो क्या कर रही है। अगली पीढ़ी अगर हमारी इसको संभाल कर चलाएगी और वे और आने वाली पीढ़ी को अपनी ये परंपरा, अपनी ये थाती सौंपेगी, तो ये चलता ही रहेगा। और हमारी बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं, दिल से, तहे दिल से शुभकामना है कि रेडियो को किसी के नज़र ना लगे और ये बदस्तूर चलता रहे, इसका सफ़र और आगे बढ़ता रहे।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कल, आजकल और कल का ये सफ़र यूं ही बदस्तूर जारी रहे, ये कामना है हम सबकी। श्रोताओं, डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र लंबे समय तक हमारे केंद्र की गरिमा बनी रहीं और ये गरिमा आज भी हमारे साथ हैं, ये जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करके। और गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी ओर से, हमारे सभी श्रोताओं की ओर से यहाँ आने का, हमसे इतनी सारी बातें करने का, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, इस सफर का एक हिस्सा हम भी रहे बहुत सालों तक, इसका हमें गर्व भी है और खुशी भी है। चलते चलते सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर के अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम 90 साल बेमिसाल। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुनी आकाशवाणी कानपुर की पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका और प्रसारक डॉक्टर गरिमा शैलेंद्र से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी प्रवीण कुमार और प्रस्तुति दीपशिखा गुप्ता की।

102.2 पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर। वक्त हो चला है विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला विविधा का, और विविधा में आज कव्वालियों की महफिल सज रही है। प्रोग्राम है महफिल कव्वाली। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और साथियों की गाई इस कव्वाली के साथ। कलाम जावेद अख्तर का तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: महफिल कवाली प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्राम के आखिर में अब आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी की आवाज में ये कवाली। कलाम कौसर मुनीर का है और तर्ज बनाई है प्रीतम ने।

नमस्कार, अब सुने मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने से संबंधित दृष्टिकोणों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर बातचीत हुई। विकसित भारत की साझा परिकल्पना को साकार करने के लिए भविष्य में सुधार करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन रॉय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राम मोहन रॉय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि राजा राम मोहन रॉय ने समाज को अंधविश्वास से विवेक की ओर, कुरीतियों से प्रगतिशील चेतना की ओर अग्रसर किया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में उनका योगदान सदैव राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। जनगणना 2027 के अंतर्गत आज से प्रदेश में स्वगणना के बाद दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें मकानों को गिनने का सिलसिला शुरू होगा। आज से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर घर जाएंगे और लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इसी क्रम में हापुड़ में जनगणना प्रगणक घर घर जा रहे हैं। प्रगणक मकान को एक स्थायी नंबर प्रदान कर रहे हैं, जिसके बाद जनगणना बिंदुओं पर परिवार का ब्यौरा प्राप्त कर डिजिटल माध्यम से भरेंगे। प्रदेश में तापमान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार पांचवें दिन राज्य के बांदा जिले में देश का सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आज बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होगी। अंत में, प्रदेश सरकार ने कल राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 2% बढ़ा दिया। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा।

राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

क्या बात है, वो प्यार भी क्या जो दीवानगी की हद ना पार कर जाए। और यही प्यार है हमें आपसे 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स लेकर एक बार फिर रोली शुक्ला आ चुके हैं आप सबके बीच में। और तैयार हो जाइए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स के लिए, उसे इंजॉय करने के लिए। एक के बाद एक ये ट्रैक्स आपके लिए प्ले करूंगी और बस यही उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में वो जो काम चल रहे हैं, जो आप फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जल्दी से हो जाए और साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स के साथ। So stay tuned, stay connected.

और दोस्तों देखते ही देखते ही देखिए समय कहाँ गया है, 10:54 हो चले हैं और ये समय है जब ये प्रोग्राम यहीं पर वाइंड अप करने का टाइम है, यानी ये सुपर हिट सॉन्ग्स यहीं पर वाइंड अप करने का टाइम है। आपको आज के सॉन्ग्स कैसे लगे ये जरूर बताएगा, और फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, क्योंकि अगला प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। कौन सा प्रोग्राम? जी हाँ, वही आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसमें आप अपने मेल हमें भेजते हैं और हमें कॉल भी करते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजार, एक न्यूज ब्रेक और न्यूज ब्रेक उस पर ढेर सारे गानों के साथ एक बार फिर से आपकी आरजे होस्ट संदोष रोली शुक्ला आपसे मिलती है एक बार फिर।

0: हमनवा प्रोग्राम के संग आज मैं हूँ आरजे सौरभ और मेरी हमनवा हैं
1: मैं हूँ लक्ष्मी। श्रोताओं बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से आप सभी का, और सौरभ जी आपको भी नमस्कार।
0: आपको भी लक्ष्मी। और लक्ष्मी
1: जी,
0: जब स्टूडियो आप आई होंगी तो बाहर का माहौल कैसा लगा?
1: कोई नई बात नहीं है सौरभ जी, जो आपने कह दिया वो सभी महसूस कर रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। इस समय लू का भी मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है, इतनी तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं, तो बहुत जो ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय।
0: और ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सुबह 10 बजे भी अगर आप स्टूडियो आई हैं तो 10 बजे भी ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे दिन के 2 बज रहे हैं।
1: ये 8:30 बजे से फील हो रहा है ऐसा। तो मॉर्निंग में जो हल्की सी भी ठंडक वो रहती है वो 7:30 बजे तक रहती है, उसके बाद जो है गर्मी बढ़ने लगती है।
0: बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो गर्मी है, या स्पेशली बोले हम मई और जून की, ये जो गर्मी है अब पहले जैसी कहीं ना कहीं आप देखें तो नहीं रही।
1: सही बात है, जैसे हम लोग सुनते रहते हैं कि पिछले साल इससे थोड़ी कम गर्मी थी, तो दिन पर दिन जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जून की गर्मी यानी कि जेठ की गर्मी वैसे भी कही जाती है कि सर ढक के रखना होता है उसमें, तो इसको जेठ जी से भी जोड़ा गया है हालांकि, लेकिन अब वो भी क्रॉस कर रहा है कि पहले हम लोग सोचते थे कि रेगिस्तान में या राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस साइड पर बहुत ज़्यादा होती है गर्मी और बारिश और सर्दी, तीनों मौसम, लेकिन अब तो ये पर्टिकुलर एक जगह के लिए, एक क्षेत्र के लिए हम नहीं कह सकते कि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ कम पड़ रही है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा गर्मी सब जगह लोगों को अफेक्ट कर रही है।
0: बिल्कुल, अगर देखें तो टेम्परेचर हर साल नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है
1: जी,
0: और हीट वेव यानी लू का चलना तो एक आम बात हो गई है, और ऐसे में मैक्सिमम सभी जगहों पर पानी की कमी भी हो जाती है, देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो गर्मी का ये जो सितम है ना, ये बदस्तूर हर साल बढ़ता ही जा रहा है।
1: जी बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हैं पानी की भी कमी हो रही है, गंगा जी का भी जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है, और भी नदियां जो हैं हमारी, तो ऐसे में जब पानी सूखने लगता है बहुत तेज़, तो इस जगह पर हम कहना चाहेंगे कि हमें भी पानी की जो खपत है उसको बहुत सोच

0: समझ कर यूज़ करना चाहिए। बहुत कम कर वॉशिंग वगैरह गाड़ियों की नहीं करनी चाहिए इस वक्त, जिसमें बहुत सारा पानी लगता है, तो बाहर भी गाड़ियाँ ना धुलाएं और कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलरेडी पानी नहाने में इस तरह से और
1: बिल्कुल
0: चीज़ों में खर्च होता ही है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन और जो अननेसेसरी पानी बहता रहता है, और बाहर जो जानवर होते हैं, तो घर के बाहर या अपार्टमेंट के बाहर कुछ ऐसा सब बना दें जिसमें पानी भर के रखें
1: पी
0: ताकि वो
1: सकें।
0: पी सकें।
1: बिल्कुल, तो गर्मियों में हम बात कर रहे हैं, तो गर्मी अब सिर्फ एक लक्ष्मी मौसम नहीं रह गया है,
0: जी
1: बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।
0: और पहले लोग कहते भी थे कि गर्मी में भी शामें ठंडी हो जाती थी, लेकिन अब रात में तो गर्म हवा अभी भी रात में आप देख लीजिए, पूरी रात ऐसा महसूस होता रहता है कि इतनी गर्मी है, और उस जगह पे कूलर भी काम नहीं कर रहा है सही से।
1: बिल्कुल, कूलर नहीं काम कर रहे हैं, एसी
0: जी
1: की नहीं काम कर रहे हैं,
0: जी
1: और ये जो आपने बात कही कि अब गर्मी में शामें ठंडी बिल्कुल भी नहीं होती, और ये सब जो कारण है वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग।
0: जी ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ों की जो कटाई हो रही है इतना, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, लोगों को आवास चाहिए, तो उसके उसमें वो जो जंगल है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके साथ साथ जब पेड़ ख़त्म होते हैं तो पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है तो अल्टीमेटली गर्मी
1: बिल्कुल,
0: बढ़
1: तो ये
0: जाती
1: जो
0: है।
1: नेचुरल जंगल हैं उन्हें हम काटते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं कंक्रीट के जंगल,
0: जी
1: यानी घर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मुख्य कारण है इस बढ़ती हुई गर्मी के।
0: भाई, पेड़ कम होंगे तो वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, और शहरों में सड़कों और इमारतों की वजह से गर्मी ज़्यादा देर तक बनी भी रहती है। इसे हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहा जाता है सौरभ जी।
1: बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रह गया है, ये हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रही है, जैसे कि हीट स्ट्रोक का
0: जी
1: होना, डिहाइड्रेशन का होना, चक्कर आना, कमजोरी का आ जाना, या फिर स्किन से रिलेटेड समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं।
0: और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्म हवाएं लगातार चलती हैं, तो उसे जो हीट स्ट्रोक की आपने बात की है, तो जब लू चलती है, तो जब हमारे शरीर में संतुलन बिगड़ता है इस तरह से, तो लू लग जाती है और ये शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ा देती है।
1: बिल्कुल, और लू लग जाना या फिर हीट स्ट्रोक का लग जाना, इसके मुख्य जो लक्षण हैं वो हो जाते हैं, जैसे कि तेज़ सर में दर्द का होना या फिर ज़्यादा प्यास का लगना, चक्कर का आना, उल्टी होना या फिर शरीर में कमज़ोरी होना, और कभी-कभी तो हीट वेव इतना ज़्यादा असर कर जाती है कि व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है।
0: जी बिल्कुल सही बात है ये। और ऐसे में होता क्या है कि खासकर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं या हमारे बुजुर्ग हैं या बाहर जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। होता क्या है कि हम लोग आजकल इसी बात पे, हम सौरभ जी, मुझे ध्यान आया कि आजकल जो शॉपिंग का सिस्टम जो ऑनलाइन चल गया है,
1: बिल्कुल,
0: और इवन घर की सारी सामग्री भी हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं घर में बैठे बैठे, तो एक तरफ हम बच तो जाते हैं कि हम गर्मी से बच गए और हमने मंगा लिया, लेकिन जो सप्लायर होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़
1: बॉयज
0: होते
1: होते
0: हैं,
1: हैं।
0: वो गर्मी में इसमें उनके ऊपर बहुत असर होता है। तो मेरे ख्याल से उनका, क्योंकि हमें पहले ही से पता लग जाता है कि वो इतनी देर में आ रहे हैं, तो बजाय उनके दरवाजे पे आने का वेट ना करें, पहले से एक बोतल पानी ठंडा लाके रखें ताकि
1: बिल्कुल,
0: उनको पानी पिला सकें। और जो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में था कि कुछ थोड़ा सा गुड़ या
1: हाँ
0: मीठा सा दे
1: मीठा,
0: देते थे, तो उसका भी एक तरह से सम्मान होता है हमारे मेहमान को, कि सम्मान करते हुए हमने उनको कुछ मीठा दिया। दूसरा उसका साइंटिफिक रीज़न ये
1: हाँ
0: होता है
1: शरीर
0: कि
1: को
0: जो ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में,
1: तुरंत
0: एनर्जी तुरंत मिल
1: मिल
0: जाती है।
1: जाती है।
0: तो ऐसा ज़रूर करें कि अगर आपको घर पे बैठे ही सुविधा मिल रही है, तो उनका थोड़ा पानी का ख्याल ज़रूर रखें कि एक बॉटल ठंडा पानी उनको पीने को ज़रूर दें।
1: बिल्कुल, और जैसा कि आपने बोला कि ये जो डिलीवरी बॉयज़ हुए या फिर ऐसे व्यक्ति जो अपने काम को कतई टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि
0: जी
1: सरकार भी समय-समय पर ऐसी एडवाइजरीज जारी करती रहती है कि दिन के पीक आवर्स में 12 से 4 के बीच में घर से बाहर ना निकलें, पर वो लोग क्या करेंगे जिनके काम ही ऐसे हैं कि
0: जी
1: उनको
0: सही
1: बाहर
0: बात है।
1: घूमना ही है अपने काम के सिलसिले में। तो ऐसे में कुछ सावधानियां हम बरत कर इस हीट वेव को, गर्मी को अपने शरीर को नुकसान पहुंचा

0: से बचा सकते हैं।
1: तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हम बहुत सारा पानी पिएं, थोड़ी थोड़ी देर में पिएं, एक साथ नहीं पी सकते तो थोड़ी थोड़ी देर में पिएं, या
0: बिल्कुल
1: पानी का कोई अल्टरनेट हो, यानी बेल का शरबत है, नारियल पानी है, नींबू है, नींबू पानी, छाछ, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको भी हम अपने जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए इसको पी सकते हैं।
0: बिल्कुल, एक नेचुरल पेय पदार्थ हैं और इनके अपने अलग फायदे होते हैं। और ये पेय पदार्थ ना ही केवल वो लोग पिए जो घर के बाहर रहते हैं, कई बार हम एसी में बैठे रहते हैं और हमें प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन
1: जी
0: इसका ये मतलब नहीं कि हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता नहीं है,
1: जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एसी में भी बॉडी जो है वो ड्राई हो
0: हो
1: जाती है।
0: जाती
1: वो
0: है।
1: एसी का एक माइनस पॉइंट यह है कि वो बॉडी के स्किन को ड्राई करने लगता है, तो इस वजह से पानी तो ज़रूर पिए और उसको लगातार, क्योंकि सब चीज़ों का इलाज पानी
0: पानी
1: ही
0: ही
1: है।
0: है। और साथ ही साथ घरों से, जैसा कि अभी हमने बताया, कि दिन के पीक आवर्स में निकलने की बजाय कोशिश करें कि उस वक्त को टालें। बहुत ज़रूरी हो तो ही उस समय में बाहर निकलें, और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने सर को अच्छी तरह से ढक कर निकलें, या तो पैदल जा रहे हैं तो छाते का प्रयोग करें, या
1: जी
0: फिर टोपी या फिर गमछे, एक सूती कपड़े को सर पे अपने लपेट लें।
1: हाँ, स्टोल वगैरह, एक कॉटन स्टोल, और स्टोल का यूज़ जो आप कर रही हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो कोशिश करें कि डार्क कलर का स्टोल ना लें। डार्क कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है गर्मी को ज़्यादा, तो आप वाइट कलर, क्रीम कलर, या जो लाइट पेस्टल कलर्स होते हैं उनके स्टोल को अच्छी तरह से बांधें और सनग्लासेस लगाएं और तब बाहर निकलें, और अवॉइड करें, अगर ज़रूरी, बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाहर निकलना अवॉइड करें शाम तक।
0: और अगर बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें जरूर कि बाहर के खान पान से बचें।
1: जी ये बहुत ज़रूरी बात है, स्ट्रीट फूड बिल्कुल अवॉइड करिए इस वक्त, आपकी ज़रा सी जो टेस्ट का होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपका नुकसान
0: बिल्कुल
1: हो सकता है, तो इसका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी मत खाइए इस समय।
0: और ऐसा नहीं है कि सारे स्ट्रीट फूड्स खराब होते हैं, बस होता यह है कि गर्मियों में खाना जो होता है वो जल्दी खराब हो
1: हाँ,
0: जाता है।
1: दूसरा रीज़न ये भी होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी भी होता है,
0: स्पाइसी
1: वो
0: होता
1: भी
0: है,
1: रीज़न होता है
0: बिल्कुल
1: तबीयत ख़राब होने का। और घर को ठंडा रखा कैसे जाए, मतलब आप एक ठंडा रखना, तो ये होता है कि आपका कूलर चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, तो चल रहा है। कई बार होता है कि हम एक डोर को क्लोज करते हैं तो एसी की ठंडक बनी रहती है,
0: बनी
1: लेकिन
0: रहती
1: हर बार घर में इतने सारे मेंबर्स होते हैं तो वो क्लोज करना भूल जाते हैं,
0: है।
1: तो वो पूरा इतना एरिया कवर नहीं कर पाता है एसी। तो इसके बजाय ठंडा रखने के वो तरीके हैं कि आप डार्क कलर के कर्टेंस डालें, सुबह और शाम को खिड़कियों को खोल दें ताकि टेम्परेचर जो है बराबर
0: मेंटेन
1: बना
0: रहे।
1: रहे, मेंटेन बना रहे, और शाम के समय जो है वो, रात के समय आप जैसे वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, इन सब का यूज़ रात के समय करें, जैसे किचन में दिन के समय इन सब चीज़ों को करने से और जो है हीट वो होती है, तो आप जो है हीट को कम करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गर्मी लगती है ना वो रसोई में लगती है महिलाओं को, तो
0: बिल्कुल
1: रसोई घर को ठंडा कैसे रखें, एग्जॉस्ट फैन लगाएं, तो छोटी छोटी चीज़ें, अपने प्लांट्स लगाएं, एलोवेरा प्लांट लगाएं अपने घर के अंदर, जो एक तरह से आपको ऑक्सीजन भी देता है और जो वातावरण होता है वो भी ठंडा बना रहता है।
0: बिल्कुल, और ये बात एकदम सही है कि केवल एसी चला लेने से ही गर्मी की समस्या खत्म नहीं होती है। इसके लिए हमें जो छोटे छोटे उपाय हैं जो आपने अभी हमें शेयर किए हैं वो भी करने होंगे, जैसे पेड़ लगाना
1: जी
0: सबसे एक अच्छा उपाय है। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे हमारे चारों ओर उतनी ही गर्मी भी कम होती जाएगी, यानी किसी भी रूप में हमें प्रकृति को बचाना होगा।
1: हाँ, पेड़ जरूर लगाइए। हाँ ये है कि एक लॉन्ग प्रोसेस होता है कि उसको पेड़ बनने में वक्त लगेगा, लेकिन आप एक तरह से अपनी आने वाली जनरेशन को जो सुविधा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेड़ लगाना चाहिए, जिससे आगे की जो जनरेशन आ रही है वो खुशहाल जीवन अपना बिता सके।
0: बिल्कुल, साथ ही साथ पेड़ों को लगाने के साथ साथ पानी की बचत भी करिए, बिजली की बचत करिए, और प्लास्टिक्स या फिर ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स का उपयोग कम से कम करिए, और यही आपके छोटे छोटे से कदम जो हैं भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।
1: और इसी के साथ चलिए आपको एक ठंडा ठंडा सा सॉन्ग हम सुना देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।

0: वाकई दिन सनी सनी ही है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ये गाना बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल परफेक्ट है। और गर्मी जो आप बात कर रहे हैं ना, इतनी गर्मी है कि लगातार जो हमारे मोबाइल पे मैसेजेस भी आते रहते हैं, अलर्ट मैसेजेस, कि अभी एक मैसेज आया था कि आपके वन क्षेत्र जो आसपास के हैं उसमें जंगल में आग लगने का जोखिम इस समय ज़्यादा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोगों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो हमारे भाई लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हालांकि हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि स्मोकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कर रहे हैं उनके लिए यह है कि आप जलती हुई सिगरेट को इधर उधर कहीं भी ना फेंक दें। ध्यान से आप कभी भी स्मोकिंग करें तो अच्छी तरह से उसको बुझा के,
0: बुझा के
1: क्योंकि वो एक जरा सी

0: चिंगारी जो होती है
1: इस समय
0: वो बड़ा रूप ले सकती है।
1: बिल्कुल इस वक्त गर्मियां जो है अपने पूरे शबाब पर हैं, टेम्परेचर 44 के पार जा चुका है और प्रदेश के कई शहरों में तो कुछ शहर जैसे बांदा हुआ वहाँ 47 डिग्री तक भी पहुँच गया है। और इन सब का कारण हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, पर जिस विषय पर हम अब बात करने जा रहे हैं वो विषय सिर्फ पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
0: जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, जो हर साल 22 मई को मनाया जाता है यानी आज के दिन। और इस दिन को मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की थी ताकि दुनिया भर के लोग प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें।
1: बिल्कुल लक्ष्मी जी, अगर अक्सर लोग जैव विविधता शब्द सुनते हैं लेकिन उसका असली मतलब शायद नहीं समझ पाते।
0: सही कहा आपने, सरल भाषा में कहें तो धरती पर मौजूद हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, समुद्री जीव और सूक्ष्म जीव सब मिलकर जैव विविधता क्रिएट करते हैं।
1: बिल्कुल, यानी खेतों की मिट्टी में रहने वाला एक छोटा सा केचुआ भी उतना ही जरूरी है जितना जंगल का शेर।
0: जी
1: और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति का हर जीव पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है।
0: दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में हजारों प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं।
1: और भारत में भी कई दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से बाघों का संरक्षण, प्रोजेक्ट एलिफेंट के जरिए हाथियों का संरक्षण और गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण अभियान।
0: और अच्छी खबर ये है सौरभ जी कि हाल के वर्षों में भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और इसके साथ ही भारत सरकार जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी चला रही है, कई स्कीम्स हैं ऐसी, जैसे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो जैव विविधता संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए काम करती है।
1: बिल्कुल, साथ ही साथ अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें, जैसे कि इस समय पूरे देश भर में आईपीएल की धूम है
0: जी
1: और आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में आपको जैसे पता होगा कि ये 19वां संस्करण चल रहा है और इस संस्करण में फेंकी जाने वाली हर डॉट बॉल, जितनी भी डॉट बॉल किसी भी मैच में फेंकी जाती है तो 19वें संस्करण में हर एक डॉट बॉल पर 19 पेड़ लगाए जा रहे हैं। और ये जो पहल है ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और टाटा ग्रुप द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही ग्रीन डॉट बॉल पहल के तहत ये कदम लक्ष्मी जी उठाया जा रहा है। और लीग मैच में फेंकी जा रही हर एक बॉल पर जो भी डॉट होती हैं उनमें 19 पेड़ लगाए जाते हैं और जितने भी सेमीफाइनल या फाइनल के मैचेस होंगे या प्ले ऑफ के मैचेस होंगे उसमें हर एक डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाने की कोशिश की जा रही है।
0: ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सौरभ जी। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में इको क्लब्स के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए इंस्पायर भी किया जा रहा है।
1: साथ ही साथ सरकार का नमामि गंगे मिशन भी नदियों और जलीय जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत देश में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और वन क्षेत्र बढ़ाने के काम भी किए जा रहे हैं। लक्ष्मी जी, आजकल मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जैव विविधता के नुकसान से जुड़े हुए हैं। कभी इतनी ज्यादा गर्मी, कभी अचानक भारी सी बारिश या फिर कभी सूखा पड़ जाना, ये सब प्रकृति के असंतुलन के ही तो प्रतीक हैं।
0: जी, और अगर समय रहते हमने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो भविष्य में पानी की कमी, साफ स्वच्छ हवा और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर बदलाव जरूर ला सकते हैं।
1: बिल्कुल, अगर हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक्स का उपयोग कम करें, जल संरक्षण करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें तो हम प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: यहाँ तक कि घरों की छत पर पानी का एक छोटा सा बर्तन रखना भी गर्मी में पक्षियों की जान बचा सकता है, तो ज़रूर रखें।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है। हिमालय

0: पश्चिमी घाट, सुंदरवन और कक्ष जैसे क्षेत्र जैव विविधता के अनमोल खजाने हैं।
1: और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीरता से काम कर रही है, क्योंकि प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है।
0: तो आइए आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सब संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित बनाएंगे।
1: क्योंकि जब धरती हरी भरी होगी तभी जीवन होगा खुशहाल।

0: की बारिश, यानी जब बारिश का मौसम आएगा ना, तो वाकई ये गर्मी हम शायद तब तक भूल चुके होंगे। और जो गर्मियों की बारिश होती है ना, उसकी भी एक अपनी खास बात होती है। गर्मियों की बारिश के बाद जब सूरज बादलों के पीछे से झांकता है और आसमान में सात रंगों की एक खूबसूरत धनुषाकार आकृति दिखाई देती है ना, तो मन अपने आप खुश हो जाता है। उसे ही हम कहते हैं इंद्रधनुष।
1: यानी रेनबो।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंद्रधनुष यानी रेनबो बनता कैसे है? क्यों इसमें हमेशा सात रंग दिखाई देते हैं और क्यों ये केवल खास परिस्थितियों में ही नजर आता है? तो आज की इस बातचीत में हम समझेंगे इंद्रधनुष के पीछे छिपा असली विज्ञान आसान और रोचक तरीके से।
0: तो सबसे पहले तो यही बताइए कि इंद्रधनुष बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है?
1: तो देखिए, इंद्रधनुष बनने के लिए मुख्य रूप से तीन चीजों की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी, वातावरण में पानी की छोटी छोटी बूंदें और देखने वाले व्यक्ति की सही पोजीशन, मतलब वो किस एंगल पर खड़ा हुआ है।
0: यानी सिर्फ बारिश का होना ही काफी नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं, अगर बारिश हो रही है लेकिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा तो इंद्रधनुष बिल्कुल नहीं बनेगा। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों के अंदर जाकर बैंड हो जाता है और वो जो है बिखर जाता है पूरी तरफ।
0: बिल्कुल, लेकिन सूरज की रोशनी तो सफेद दिखाई देती है, फिर उसमें इतने रंग कहाँ से आते हैं?
1: यही तो साइंस की सबसे मजेदार बात है। असल में सूर्य की सफेद रोशनी कई रंगों से मिलकर बनी होती है। जब ये रोशनी पानी की बूंदों में प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है, यानी बैंड कर जाता है, बेंडिंग।
0: तो रिफ्रेक्शन यानी अपवर्तन का क्या मतलब हुआ?
1: जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो बैंड हो जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और क्योंकि हर रंग की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हर रंग अलग अलग मात्रा में बैंड कर जाता है।
0: यानी लाल रंग कम मुड़ता है और बैंगनी ज्यादा, तभी लाल रंग जो होता है रेनबो में वो काफी बड़ा और ऊंचा दिखाई देता है, सबसे टॉप
1: जी।
0: पर होता है, और जो बैंगनी रंग यानी वॉयलेट होता है वो सबसे नीचे और छोटा सा होता है।
1: हाँ, तो ज्यादा दिखाई देता है और लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो सबसे कम बेंड करता है, जबकि जो बैंगनी रंग है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बेंड करता है। इसी कारण रंग अलग-अलग दिखाई देने लगते हैं हमें।
0: तो अब पूरे प्रोसेस को लक्ष्मी एक साथ क्यों ना हम समझ जाएं?
1: जी, तो होता क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। आप तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं लाइन से एक के बाद एक, तो ये अच्छी बात है। जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं तब तीन मुख्य घटनाएं होती हैं। रिफ्रैक्शन, रोशनी बूंदों के अंदर एंटर करती है और बैंड कर जाती है, राइट। और डिस्पर्शन, दूसरा होता है डिस्पर्शन, यानी जो वाइट कलर की रोशनी होती है सूरज की, वो अलग अलग कलर्स में विभाजित हो जाती है, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन।
0: बिल्कुल, और ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना दोस्तों, वो बूंदों के अंदर टकराकर रोशनी वापस लौटती है, और जब ये रोशनी बूंदों से बाहर निकलती है तो दोबारा रिफ्रेक्शन हो जाता है, और
1: जी
0: यही प्रक्रिया लाखों करोड़ों बूंदों में एक साथ होती है, और हमें आसमान में एक विशाल सुंदर सा इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है।
1: और दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि इंद्रधनुष यानी रेनबो में रंग हमेशा एक निश्चित क्रम में, यानी सीक्वेंस में दिखाई देते हैं, ऊपर से नीचे के क्रम में। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। और इसे याद रखने के लिए इंग्लिश में इसको कहते हैं बिबग्योर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
0: और इसका कारण वही है, वेवलेंथ, यानी हर रंग का झुकाव अलग होना, इसीलिए वो एक विशेष क्रम में हमें दिखाई देते हैं।
1: एक और सवाल जो अक्सर सबके मन में आता है, इंद्रधनुष आधा गोली क्यों दिखाई देता है? बताइए सौरभ जी।
0: बिल्कुल, असल में इंद्रधनुष होता तो पूरा गोल है, यानी सर्कल होता है,
1: जी
0: लेकिन पृथ्वी की सतह और हमारे देखने के एंगल उसके निचले हिस्से को छिपा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी ऊंचाई पर जैसे किसी पहाड़ पर या फिर हवाई जहाज के माध्यम से इंद्रधनुष को देखने का प्रयास करें तो वो उसे पूरा गोलाकार यानी एक सर्किल के रूप में इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है।
1: और रेनबो हमें ये भी सिखाता है कि अलग अलग रंग मिलकर सुंदरता बनाते हैं। प्रकृति का हर रंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण संतुलित रहेगा तभी हम ऐसी सुंदर प्राकृतिक घटनाएं देख भी पाएंगे।
0: तो दोस्तों आज हमने जाना कि इंद्रधनुष केवल एक सुंदर दृश्य ही नहीं बल्कि प्रकाश पानी और विज्ञान का एक अद्भुत मेल है।
1: और अगली बार जब बारिश के बाद जो आसमान में आपको रेनबो दिखाई दे ना, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे लाखों पानी की बूंदें और प्रकाश का अद्भुत जो विज्ञान है वो काम कर रहा है।

0: और सौरभ जी जो हमारे श्रोता प्रोग्राम सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो से, और रेनबो की बात अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि हमारा आकाशवाणी रेनबो भी कुछ ऐसा ही है कि इसकी जो गूंज उठती है वो देश के कोने कोने में रिमोट एरिया तक, एक एक जन जन की वाड़ी तक पहुंचती जा रही है? तो ये कुछ ऐसी ही सफेद रोशनी के रूप में, ध्वनि तरंगों के रूप में जो हमारा आकाशवाणी, हमारा रेनबो जो पहुंच रहा है पूरे देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में, ऐप के माध्यम से भी लोग हमें सुन रहे हैं। आज आकाशवाणी के 90 वर्ष की हम बात अगर करने जा रहे हैं तो ये आपको बता दें श्रोताओं कि 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था, और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश के विभिन्न हिस्सों में वॉकथॉन, जिंगल मेकिंग प्रतियोगिताओं और विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से इसकी समृद्ध विरासत जो है उसका हम उत्सव मना रहे हैं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी जिसका शाब्दिक अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज, एक ऐसी विरासत जहां आवाजों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक, जहां से एक ऐसी गूंज निकली जिसने देश को आकार दिया, जो जन जन की वाणी में ऐसे घुल गया जिससे राष्ट्र के जन जन का सुप्रभात तब से आज तक वंदे मातरम की धुनों के साथ प्रारंभ होता है।
0: आज आकाशवाणी 551 स्टेशनों का संचालन करता है श्रोताओं, 23 भाषाओं और 179 बोलियों में प्रसारण करता है, और यही नहीं वैश्विक स्तर पर देश की आवाज को प्रवासी भारतीयों से भी जोड़ता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग, जिसे NSD बोलते हैं, रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए देश और दुनिया के विभिन्न भूभागों में 24 घंटे सातों दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार, स्वस्थ मनोरंजन, उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराने में निरंतर संकल्पबद्ध है।
1: आकाशवाणी अपने विविध चैनलों जैसे विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड के तहत महिलाओं से जुड़े उपयोगी कार्यक्रम, स्वास्थ्य चेतना और हेल्थ मैगजीन के तहत संबंधित रोग विशेषज्ञों द्वारा बीमारी के लक्षणों, उनके कारणों, उनके बचाव और निदान पर आधारित उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण, फोन इन प्रोग्राम के जरिए श्रोताओं से वार्तालाप और उनके द्वारा फरमाइशी गीतों का प्रसारण, साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर आधारित कार्यक्रम में क्षेत्र से जुड़े विकास, सामयिकी, खेलों और शिक्षा से जुड़ी बातें समाहित की जाती हैं।
0: और सौरभ जी, हम अपने श्रोताओं को एक ऐसा गाना सुनवाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आकाशवाणी हमारे रेडियो के लिए मेरे जज्बातों और बल्कि मेरे श्रोताओं के भी यही जज्बात होंगे, तो लीजिए सुनिए ये सॉन्ग।

0: सौरभ जी, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात पूछें कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपको किसी चीज़ को करने का मन बिल्कुल भी अंदर से ना हो, या कोई चीज़ खाने का मन बिल्कुल भी ना हो, और आपको दूसरों का मन रखने के लिए वो ऐसी कोई रेसिपी खानी पड़ी हो जो आपको कभी पसंद ना हो, या आपको ऐसा कोई काम करना पड़ा हो जो आप अंदर से ना चाहते हो, आपके पास समय भी नहीं है और लेकिन आप उसको मना भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है?
1: लक्ष्मी जी, सच बताएं तो कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि एक जो आदत होती है ना इंसान की
0: जी,
1: कि दूसरे को सामने से मुंह पर ना नहीं कहते बनता, तो उसकी वजह से कई बार ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है कि ना चाहते हुए भी कई ऐसे काम करने पड़े हैं, कई ऐसी चीज़ें, जैसे आपने बोला कि कुछ खाने की चीज़ हो, अगर सामने वाले ने प्यार से किसी चीज़ के लिए ऑफ़र किया तो उसको ना नहीं कहते बना, और वो काम या फिर वो चीज़ खानी पड़ी है, उस काम को करना पड़ा।
0: और आपको बताएं, आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है कि ना कहना सीखें। जीवन में ना कहना सीखना एक वाइटल स्किल है जो हमें बाउंड्रीज सेट करने, प्रायोरिटाइज अपनी सेल्फ केयर एंड लीड अ हेल्दियर मोर बैलेंस्ड लाइफ जीने में सक्षम बनाती है। सो लर्न हाउ टू से नो टू डिक्लाइन रिक्वेस्ट विदाउट फीलिंग गिल्टी।
1: बिल्कुल, जहाँ कई लक्ष्य आत्म सुधार पर केंद्रित होते हैं, वहीं ना कहने की शक्ति के माध्यम से अपने कल्याण को प्राथमिकता देना हमें सीमाओं पर विचार करने और अनावश्यक प्रतिबद्धताओं से मुक्त होने में मदद करता है।
0: और हमें अक्सर जो होता है क्या, दूसरों को डिसअपॉइंट करने का एक फियर होता है मन में। अगर हम किसी चीज़ के लिए हमको ना कहना पड़े तो ऐसा लगता है कि अगला कोई नाराज ना हो जाए, और ये अक्सर होता क्या है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की वजह से फील होता है हमें, जो सीधे तौर पर हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है,
1: और जिसकी वजह से हम ना कहने का मन होने के बावजूद हाँ कह देते हैं। लोगों को निराश करने का डर होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे कोई विश्वासघात कर रहे हैं सामने वाले के साथ, या उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए हम ना नहीं कह पाते।
0: हाउएवर, ये समझना बेहद ज़रूरी है श्रोताओं कि ना कहने का मतलब किसी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टेड इट इज़ अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटाइजिंग अवर वेल बींग। अपने रीज़न को, जो आपका रीज़न है मना करने का, उसको ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर हम दूसरों को अपना पर्सपेक्टिव समझने में हेल्प भी कर सकते हैं, और कई केसेस में लोग हमारी इस ऑनेस्टी को अप्रिशिएट भी करते हैं और हमारे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं।
1: बिल्कुल, ये सही कहा आपने, कई बार दूसरों की स्वीकृति और मान्यता पाने की चाहत अक्सर हमारे ना कहने की असमर्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हम अपनी भलाई के बजाय दूसरों की राय को प्राथमिकता देने लगते हैं। दूसरों की राय या उनकी मांगों को पूरा करने की हमारी क्षमता ही हमारे मूल्य का निर्धारण नहीं होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इस डिपेंडेंसी यानी दूसरों के अप्रूवल एंड वैलिडेशन के बजाय हम अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहिए। और जब हम अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैलिडेशन पर फोकस करेंगे ना, तो ग्रेजुअली नो कहने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और कई बार सौरभ जी, क्या होता है कि गिल्ट और ऑब्लिगेशन जो होता है किसी की रिक्वेस्ट डिक्लाइन करने में बैरियर बन जाते हैं, जिसके लिए दूसरों से ओपनली कम्युनिकेट ज़रूर करें। कॉन्स्टेंटली हाँ कहना भी भले ही अच्छा हो, मगर कई बार इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
1: बिल्कुल, जैसे कि ज़्यादा कार्यभार संभालने से कई बार शारीरिक और भावनात्मक थकान भी हो सकती है। हर दूसरे के द्वारा किए गए अनुरोध पर हाँ कहना तनाव को भी बढ़ा सकता है। कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम डिप्रेशन का अनुभव भी कर सकते हैं, और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के चक्कर में खुद को समय ना दे पाने पर शारीरिक और मानसिक थकान भी महसूस कर सकते हैं।
0: जी, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के लिए कभी कभी ना कहना बेस्ट वे होता है।
2: नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता। सर पे पाँव रख के सिर्फ वहां जाता है जहां मैं कंधा देने के लिए की बात मत खिलाकर सुन, कोई ना कोई कितने दिन जिएगा और

0: और इसी के साथ वक्त हो चुका है 11:58:08 और अब हमारा जो लास्ट
1: सेगमेंट है, सेगमेंट है
0: जी हमनवा रसोई, वो हमारी हमनवा रसोई में आज हम आपको पिलाने जा रहे हैं कुल्लू की शरबत। तो जिस तरह से सौरभ जी गर्मियां हैं तो सभी को कुछ पेय पदार्थों की चाह होती है, और उसके साथ ही होता क्या है कि ठंडा हो और कम समय में रेडी हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो इसके लिए हम आपको बताते हैं केरल का फेमस कुल्लू की शरबत, जिसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि लोग बार बार बनाना चाहेंगे।
1: क्या बात है।
0: तो कुल्लू की एक्चुअली मलयालम भाषा का शब्द है और इसका टेस्ट खट्टा मीठा और तीखा होता है। इसे बनाने के लिए हम जल्दी से बता देते हैं आपको क्या चीज़ें चाहिए। एक नींबू, चीनी या शुगर सिरप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और बारीक 1 बारीक

0: कटी हरी मिर्च, एक चम्मच भीगे हुए सब्जा बीज, कुछ पुदीने की पत्तियाँ, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और आइस क्यूब्स। इन सारी चीज़ों को एक शेकर बॉटल या ग्लास में सभी चीज़ें डालकर 20 या 30 सेकंड तक ज़ोर ज़ोर से शेक करिए। जब इसमें आपको झाग दिखाई देने लगे तो ग्लास में डालिए और सर्व कर लीजिए।
1: बिल्कुल, और सर्व करने के साथ साथ इसे एक बार में ही पूरा पीकर इसका आनंद ले लीजिए। फिलहाल लक्ष्मी, प्रोग्राम का समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, तो मुझे यानी सौरभ को
0: और लक्ष्मी को
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें, हर किसी के लिए जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए कार्रवाई करने का एक आह्वान है। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निस्तारण तत्परता, पारदर्शिता और संवेदनशील ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक होना चाहिए। जनगणना 2027 के तहत आज से प्रदेश में गणना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी क्रम में अमरोहा में गणना को सफल और त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से प्रागणक घर घर जाकर जनगणना के अंतर्गत मकान गणना कर रहे हैं। जिले को कुल 3682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वीबीजी रामजी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कार्य समय में स्थानीय तापमान के अनुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। श्रमिकों से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 3 से 6 बजे तक कार्य कराया जा सकेगा। इसके साथ ही सभी कार्यस्थलों पर स्वच्छ पेयजल, छाया की व्यवस्थाएं नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में कार्य उपलब्ध कराया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। यह मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: और 12:03 हो चुके हैं, तरन्नुम है हाजिर लेकर प्रोग्राम स्वयं सिद्धा। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत खास है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कैसी महिला की जिन्होंने अपने हौसलों से इतिहास

सांस लिख दिया। उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। भारत की पहली महिला जिन्होंने भारत का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। फिलहाल ये ट्रैक अब तक।

जी हाँ, दिल ने आपसे कितनी बार क्या कहा और आपने कितनी बार दिल की सुनी, ये बहुत जरूरी है। और दिल कभी कभी कुछ ऐसा भी कहता है कि जो हमारी और आपकी जिंदगी में काफी आगे तक लेकर जाता है, जहाँ पर नाम होता है, जहाँ पर शोहरत होती है और जहाँ पर जाहिर सी बात है कि दौलत भी होती है। लेकिन कहते हैं ना कि सेहत के साथ और शोहरत के साथ अगर दौलत आपने कमाई है और साथ ही साथ अगर इज्जत भी उसमें शामिल है, तो फिर वो दौलत बहुत काम आती है। और दौलत से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप दौलत में शुमार करते हैं ना। दौलत एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके नाम को इज्जत से लिया जाए, उसे सही दौलत कहते हैं। और इसीलिए जो दौलत है ये कब कहाँ किस खजाने से निकल कर आए, हम और आप नहीं जानते। और हम और आप जब जानते हैं, जब वो महिला बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, उसने अपना नाम रोशन किया होता है, अपने गांव का नाम रोशन किया होता है और साथ ही साथ अपने देश का नाम भी रोशन किया होता है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नकुरी में जन्म

मीर बछेंद्री पाल। बचपन से ही उनके बहुत ज्यादा एडवेंचरस थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में बिजी रहते थे, तब बछेंद्री जी पहाड़ों को देखकर उन पर चढ़ने के सपने देखा करती थी। कहते हैं ना कि कभी कभी ये होता है कि आपको आर्थिक कमजोरी जो है वो बहुत तोड़ देती है। उनके परिवार में भी ऐसे ही था। उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। पढ़ाई भी की, साथ ही साथ उन्होंने अपने सपनों को भी जिंदा रखा। स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी उनका लगाव ट्रैकिंग में था और माउंटेनियरिंग करने का था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उनके सपनों को उड़ान मिली, कोई ऐसा मिला जिन्होंने बछेंद्री को बहुत आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। शामिल रहिए हमारे साथ प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: 12:31 प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा। बात कर रहे थे हम बछेंद्र पाल जी की, और उनकी सफलता हमें ये बताती है कि कोई भी महिला किसी से कम नहीं होती। आपके अंदर जितने भी हुनर छुपे हुए हैं, उन हुनर को पहचाने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। फिलहाल आगे बढ़ने से मैं याद आया कि अभी अब हम लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमारी जो वार्ताकार है, जो वार्ता हुई और उनके बीच में जो हमारी दो ऐसी खास शख्सियतें आई हैं उस प्रोग्राम में शामिल की हमने, उनके बारे में हम आपसे आप तक पहुंचाएंगे कुछ संपादित अंश जिनसे बात की ममता उपाध्याय ने। फिलहाल सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ तरन्नुम के साथ।
1: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी 90 वर्ष का कारवां। इस सुरमई यात्रा में जुड़े असंख्य कलाकार, वार्ताकार और प्रसारणकर्ता, जिनके पास आकाशवाणी से जुड़ी यादों और बातों का खजाना है, और ये खजाना अनमोल है। अनमोल यादों और बातों को लेकर हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ी हमारी दो वरिष्ठ प्रसारण साथी, श्रीमती शारदा लाल और श्रीमती नीना श्रीवास्तव। आज सुनिए इस बातचीत की दूसरी कड़ी, सुनिए और आनंद लीजिए।
4: ममता, हम तो पूरी तौर से उद्घोषक थे
3: जी।
4: और शारदा जी तो ओबी रिकॉर्डिंग और ये वो, इनका तो आउटसाइड

0: कई काम बहुत रहता था, फिर सारा मसाला ला करके हम लोग को देती थी जो हम लोग ब्रॉडकास्ट करते थे, और स्टूडियो में बैठ के भी प्रोग्राम करती थी लोग, महिलाओं के कार्यक्रम और साइंस का कोई प्रोग्राम
1: हाँ, बिल्कुल
0: वो आप करती थी तो उस तरह से करती थी। लेकिन पहले लोकायतन प्रोग्राम होता था एक शाम को 5:15 बजे से। तो अगर ममता तुमने रमई काका का नाम सुना होगा,
2: बिल्कुल
0: दाई का नाम सुना होगा, तो वो बहरे बाबा जो था वो लाइव होता था, विधान अनाउंसर बूथ होता था, तो उसमें हम बैठे, अब फेडर दिया उनको, उधर रमई काका खड़े भैरव बाबा और दाई खड़ी है, एक एक डिस्टेंस वो लोग लेते थे अपना कि तुम इतनी दूर खड़े हो, तुम इतनी दूर हो, कैसे पास आके कैसे बोलना है, तो हाँ। माइक के करीब कैसे आते थे, लाइव होता था 15-20 मिनट 25 मिनट, मतलब उनका तो बयान करना ही मुश्किल है।
2: ये लाइव ब्रॉडकास्ट की बात करें, क्योंकि हमारे समय में तो सब चीज रिकॉर्डेड, चाहे नाटक हो संगीत हो, पर आपके समय में शारदा जी या नीना जी लाइव संगीत क्लासिकल म्यूजिक
0: सारा लाइव होता था ममता,
2: तो कितना टेंशन रहता होगा कि यदि कलाकार समय पे नहीं आया या
0: नहीं ऐसा नहीं होता था,
1: बड़ी पाबंदी और बड़े मनोयोग से लोग,
0: हर आदमी अपने आप में तत्पर रहता था और समय से आ जाएगा, एक से एक बड़े आर्टिस्ट होते थे।
2: लेकिन नाटक भी जो होते थे वो उसमें जो ध्वनि प्रभाव डालना होता था वो सब लाइव ही होता था,
0: सब लाइव होता था।
1: देखिए ममता जी, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो एक ऐसा समय था जो बहुत चुनौती का समय था। एक बार मुझे याद है लखनऊ में एक ड्रामा प्रसारित होना था और उसमें बादल को घड़घड़ाने की आवाज देनी थी और कोई
0: उसका इफेक्ट कैसे दिया था,
1: ऐसा कोई हमारे पास साउंड इफेक्ट नहीं था कि हम बादलों की आवाज सुनाए श्रोताओं को
2: जी।
1: तो एक साहब के पास एक टीन का टुकड़ा था तो खड़खड़ करके उसको बजा दिया और सुनने के बाद लगा कि अरे वाकई में बादल गड़गड़ा रहे हैं,
0: इस तरह से इफेक्ट देते थे,
1: ऐसा लोग करते थे, सोचते थे और वो सही भी जाता। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आकाशवाणी लखनऊ का केंद्र दो बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, एक तो नाटक के लिए और दूसरा शास्त्रीय संगीत के लिए, तो ये दोनों ही चीजें अपने चरम पर थी और इतने अच्छे, इतने सशक्त और इतने उदाहरण देने वाले नाटक प्रसारित यहाँ से हुए और वो सब नाटक लाइव होते थे। सोचिए जरा, नाटकों में एक नाटक में कितने लोग होते हैं, उनका समायोजन करना, उनको सही समय से माइक्रोफोन पे आना जाना, साउंड इफेक्ट्स देना, सब कुछ साथ साथ चलता था
2: जी।
1: तो ये लखनऊ की बहुत बड़ी विशेषता बरसों बनी रही,
2: और शास्त्रीय संगीत में भी सब कुछ इतने बड़े बड़े
0: इतने बड़े बड़े कलाकार थे। और शास्त्रीय संगीत में जैसे रात में 10:30 का जो आइटम होता था उसमें भी लाइव होता था
2: जी।
0: बहुत बार होता था बाहर से आते थे, शायद उस्ताद निसार हुसैन खान थे तो वो आते थे शुरू में, क्या मतलब नए नए आए थे तो नेचुरली यूनिवर्सिटी से सीधे इधर आ गए थे
2: जी।
0: तो ड्यूटी ऑफिसर एक थे, उनका वो छड़ी लेकर आते हैं, अगर अनाउंसर ने थोड़ा गलती करी तो उसकी पिटाई करते।
2: कई बार सुना है कि यदि उच्चारण में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कलाकार बहुत नाराज हो जाया करते थे।
1: एक बात और बहुत परंपरा में रही है आकाशवाणी लखनऊ के लिए, वो ये कि बड़े बड़े कलाकारों को स्टूडियो में आमंत्रित करना। जिस समय मैं आई थी आकाशवाणी लखनऊ में तो उस समय एक बहुत अच्छा अवसर हमको मिला, बिस्मिल्ला खान साहब को नय्यर साहब ने बुलाया था
2: जी।
1: अब आप सोचिए, जो हम लोग बहुत जूनियर थे, बड़े उत्तेजित थे कि अरे उनको हम देखेंगे, उनकी शहनाई हम सुनेंगे, तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही स्टूडियो था लेकिन उसका प्रारूप दूसरा था और हम लोग जो थे आगे इकट्ठा हो गए, तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो बड़ा नक्शा मार रहे थे कि नहीं आप पीछे उठो, आप उधर आप उधर, हम लोग चुपके से पता नहीं कैसे मौका मिला और हम लोग स्टूडियो में पहुंच गए और फर्श पर ऐसे ही बैठ गए।
2: हाँ।
1: 3-4 महिलाएं हम लोग थे, बैठ गए, खान साहब सामने बैठे थे, साजिंदे बैठे हुए थे, तो खान साहब ने थोड़ी देर बाद कहा बिटिया इधर कालीन पर आ जाओ। आप समझिए कि हम लोग तो गदगद लपक के हम लोग कालीन पे बैठे और यूं अकड़े बैठे रहे कि देखिए हम तो पहुंच गए।
2: जो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे वो तो सोच रहे होंगे भाई इन लोगों तो सोने पे।
1: फिर जो उन्होंने कजरी ममता सुनाई है बनारस की, बस क्या कहने।
0: और बिस्मिल्ला खान साहब सबसे बाद में गुंज उठी शहनाई का वो गीत जरूर बजाते थे।
3: लोगों की फरमाइश आई है गूंज उठी शहनाई, और उसमें दिल का खिलौना है टूट गया।

0: इतने सीधे और इतने सिंपल थे। ये लखनऊ फेस्टिवल की बात बता रहे हैं तुम्हें, बेगम हजरत महल पार्क में होता था तब, खान साहब का प्रोग्राम था, अनाउंसर हम थे वहाँ पर।
1: जी जी हाँ, वही मैं पूछना चाहती थी कि आप लोग मंच पे बहुत सारे प्रोग्राम करते थे।
0: बहुत करते थे
1: जी जी।
0: तो खान साहब का प्रोग्राम था, वो आए लेट नाइट। ऐसे आर्टिस्ट को हमेशा लेट नाइट रखते हैं, सीनियर मोस्ट और जो इस तरह के होते हैं, तो सारे दर्शक बंधे रहे उनके आकर्षण में। तो खान साहब आए, बिटिया हमारा नंबर का अब बड़ी तेज भूख लगी, ये वर्डिंग्स थे।

0: सुनना चाहती थी हाँ। कि आप लोग मंच पे बहुत सारे प्रोग्राम करते
1: बहुत
0: थे।
1: बहुत करते थे
0: जी जी।
1: तो खान साहब का प्रोग्राम था, वो आए लेट नाइट। ऐसे आर्टिस्ट को हमेशा लेट नाइट रखते हैं, सीनियर मोस्ट और जो इस तरह के होते हैं, तो सारे दर्शक बंधे रहे उनके आकर्षण में। तो खान साहब आए, बिटिया हमारा नंबर कब, अब भूख लगी, ये वर्डिंग्स देंगे। मतलब आज की तारीख में हम सोचते हैं कि किस नाम के, किस फेम के वो थे, और कितना हमारा सौभाग्य कि हमने उनका अनाउंसमेंट भी किया और उन्होंने ऐसे कहा। उटको की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम अनाउंसर, तो उसमें यामिनी कृष्णमूर्ति जी आई थी
0: जी।
1: और भरतनाट्यम का अगर थोड़ा भी आपको पता होगा तो उनका 2.5 मिनट 3 मिनट, उसके बाद उनकी इधर से एंट्री उधर से एग्जिट, फटाक फटाक फटाक फटाक होती है उनकी। और वैसे ही अनाउंसमेंट हम कर रहे थे, रविंद्रालय में था, पहले तो ऑफ दी स्टेज अनाउंसमेंट हुआ करते थे, रविंद्रालय में पीछे ही थे। और जिस समय उनका प्रोग्राम खत्म हुआ है, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो आई, उनका आपने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया, प्लीज आप अपनी स्क्रिप्ट हमें दे देंगे हिंदी वाली
0: जी।
1: तो वो हिंदी स्क्रिप्ट कहने लगे, कोई इतना अच्छा और इतना सटीक नहीं करता है
0: जी।
1: तो एक वो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हमारी स्क्रिप्ट लेके गई थी, दूसरी राधा राजा रेड्डी का नाम सुना होगा, वो हमारी स्क्रिप्ट लेकर के गए थे हिंदी, जो अनाउंसमेंट हमने के, दोनों उटको की कॉन्फ्रेंस थी
0: जी, वो। जी। हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नीना जी, आपके पसंद का कोई गीत जो आप सुनना चाहें श्रोताओं को?
1: कुछ गाने ममता ऐसे होते हैं ना, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, जैसे ही बजाते थे तो कुछ लोगों का ये कहना था कि हम समझ गए आज ड्यूटी पे वही
0: रजनीगंधा फूल तुम्हारे जहाँ आया वहाँ पे नीना जी होंगी।
1: हाँ, उस टाइप के जो गाने बजेंगे तो पता चले हाँ वही ड्यूटी पे।

0: काम की सबके अनाउंसमेंट्स हम लोग लिखते थे, बाकायदा फाइल होती थी ड्यूटी रूम में, उस फाइल में वो लगते थे, 24 घंटे एडवांस लिख करके हम लोग जाते थे और फिर उसके बाद वो पेक्सको के पास भी जाते थे।
1: एक प्रक्रिया थी,
0: एक प्रक्रिया थी। फिर वो दूसरे दिन सुबह हमको बिफोर ब्रॉडकास्ट मिलते थे, जब हम ट्रांसमिशन के लिए आते थे तब हम अपना अनाउंसमेंट निकालते थे और करते थे।
1: हर स्तर पर एक चेक पॉइंट होता था जिससे कि जो भी प्रसारण हो वो बिल्कुल उत्कृष्ट श्रेणी का हो और उसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, गलतियां ना।
0: और उस वक्त केंद्र निदेशक भी जितने भी थे, जैसे पी माथुर जी थे, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का जब हमने किया था, जैसे ही हम सीढ़ी से उतरे वैसे पी माथुर जी ने, जैसे कोई घर के बच्चे को मतलब प्रोत्साहित करता है, शाबाशी देता, वेल डन नीना, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने,
1: प्रोत्साहन मिला।
0: उस तरह से इसी तरह से अनाउंसमेंट पे भी होता था, जो रेडियो में बोल रहे हैं तो पूरी लिसनिंग होती थी, ये नहीं था कि लिसनिंग ना हो, आखिरी शब्द जो जय हिंद का बोला जाता है वहां तक की लिसनिंग होती थी। अब यहाँ इसी संदर्भ में कहेंगे कि रेडियो सुनने की तो पुरानी आदत है, 12 बजे तक हमारा रेडियो बजता है अब भी, तो जिस समय यहाँ अनाउंसर्स बोलते हैं, कई बार हम बोलते भी जय हिंद में, हम लोगों को ये कहा गया भाई जय हिंद आप नमस्ते कर रहे हैं जाते समय, जैसे अच्छा गुड बाय नमस्ते, इससे आजकल जय हिंद करेंगे इतना जोर से मालूम दे रहा है कि
1: अच्छा जय हिंद। और आप उसको रात के हिसाब से सॉफ्टली बोलते रहे होंगे
0: हमेशा, रात के हिसाब से ट्रांसमिशन की खासियत ये होती थी कि उसी मूड में म्यूजिक जाता जाता था, चाहे वो फिल्मी गाने हो चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, राग आप देखिए अभी हम तब नहीं कह सकते, लेकिन पहले ये था कि मॉर्निंग में अगर इवन देन फिलर तक हम लोग इवनिंग राग का बजा दे तो फट से फोन आ जाता था कि ये
2: गलत
0: कैसे बजा, ये क्या कर दिया अनाउंसर ने, तो हम लोग छाट के फिलर, आप समझती होंगे मतलब दो प्रोग्राम के बीच में अगर अंतर हो गया तो पूरक संगीत जो बज रहा है तो वो हम लोग उस तरह का, और अब शायद ख्याल रखते
1: हैं कि नहीं रखा जाता है, लेकिन जितना शायद आप लोगों ने मेहनत की इसके पीछे,
0: मेहनत भी करी और जानने की कोशिश भी करी कौन सा राग किस समय का है, इसको तो जानना चाहिए इतना, जब आप बैठे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे एक से एक कलाकार है, एक से एक आपके पास आइटम्स हैं और एक आपको करना है, तो आपको उतना ज्ञान तो होना चाहिए।
1: जी, अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहना और जानकारी लेते रहना बहुत,
0: छोटी छोटी सी बातें होती कि अगर सितार बज रहा है, मान लीजिए टेप टूट गया, अब इतने बड़े आर्टिस्ट का वो बजा, टेप टूट गया, उतनी देर तो फिलर बजाएंगे ना, जल्दी जल्दी जोड़ेंगे उसको, तो फिलर सितार का नहीं बजेगा, कभी दूसरा म्यूजिक बजेगा,
1: और वो भी
2: ये बहुत छोटी छोटी बात,
0: छोटी छोटी सी चीजें
2: जिनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता था, और उस समय यदि ऐसी कोई गलती हो भी जाती थी तो फिर ये लगता था कि अब कल तो मेरी पेशी होनी
1: है। तो पेशी कभी किसी की हुई नहीं आप दोनों में से?
2: वो बिल्कुल बिल्कुल पेशी
0: कभी
2: कभी हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं नीना जी को फिर स्टूडियो से निकाल के बाहर ला रही हूँ,
0: वो भी मिला रही
2: बाहर, नहीं वो भी मैं नहीं ला रही, देखिए बाहर इसलिए ला रही हूँ कि हमारे श्रोता ये बात जान जाए कि तब रेडियो से खतों का जुड़ाव बहुत जबरदस्त था।
1: जी आज भी है, पर उस वक्त का जमाना तो
2: मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब सैकड़ों में चिट्ठियां आती थी,
0: सैकड़ों में हजारों में कही
2: नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया कि लोग ये ना समझे कि ज्यादा बोल रही है,
0: बहुत चिट्ठियां आती थी,
2: बहुत चिट्ठियां आती थी, और हमारे कार्यक्रम को सुनकर उस पर टिप्पणी करना, उसकी अच्छी बुरी बात का जिक्र करना, ये श्रोता बड़ी तत्परता से करते थे, और उनके खतों से हम लोग इस कदर वाकिफ होते थे कि हमें लगता था कि हाँ ये श्रोता की ये बात सही है, तो
0: उस पर अमल किया जाता,
2: अमल किया जाता था। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता था सुबह 6:50 पे, सवेरे सवेरे, तो उस समय मैं हर दिन शाम को एक नई स्क्रिप्ट 4.5 मिनट की लिख कर रिकॉर्ड करके ड्यूटी रूम में जमा करती थी।
1: रोज आप लिखती थी?
2: रोज, पूरी कोशिश होती थी कि मैं रिपीट ना करूं, पूरी कोशिश होती थी,
0: पूरी जब रजिस्टर पे एंट्री होती थी, बाकायदा
2: एंट्री
0: शीट पे होती थी, नंबर लिखा जाता था।
2: तो इस कार्यक्रम की एक मैं विशेष बात बता रही हूँ, बड़ी मजे की है
1: जी।
2: एक श्रोता का पत्र आया, उन्होंने कहा मैडम आप आकाशवाणी को छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ मिल जाइए, हमारे पास गाड़ी है, हम लोग गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, आप बताने वाली हैं, हम गाड़ी चलाने वाले, खूब पैसा कमाएंगे। तो हमने कहा ये भाई इनका प्रस्ताव तो बड़ा जबरदस्त है, मगर उनको हमें जवाब तो देना ही था, तो हमने कहा देखिए हम रेडियो में हैं, स्वांतः सुखाय, नहीं मतलब हमको सबके लिए सब कुछ करना है, इसलिए हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, आप अपना काम करिए,
1: भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए आप
2: ये हमारा काम जो है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप अपना

0: आपका जो समर्पण था अपने कार्य के प्रति, आपकी निष्ठा, और कितना मेहनत करती रही होंगी आप इसके पीछे, हाँ, ये दिखाता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत कैजुअल ले लेते हैं और
1: नहीं नहीं नहीं पहले तो ऐसा होता था, चाहे स्टूडियो का अनाउंसमेंट हो, मान लीजिए सुबह की सभा है, दिन की सभा है।

0: काम करिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये खत जो उस समय होते थे बहुत बहुमूल्य होते थे।
1: अपनी बातचीत में हम अब गीत संगीत का भी तड़का देना चाहेंगे, तो शादा जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ममता जी, दीदार का आप कोई भी गाना बजा दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शोले का कोई गाना बजा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा।
2: शोले का गाना बजा दीजिए, बसंती को बहुत अच्छा
0: लगता, बहुत अच्छा लगता है।
1: भाई छेड़ दिया नीना जी ने शादा जी को।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: खतों के लेकर के एक बात मैं बताना चाहती हूँ। एक जमाना था, हमसे भी बहुत पहले वाला जमाना, वाईडी पंडित पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम करते थे।
1: यज्ञदेव पंडित जी।
0: जी जी, हमने रेडियो में बोलना, रेडियो का समझना उनके ही कार्यक्रम से सीखा। वो जब बोलते थे हम लोग सुनते थे तो लगता था हाँ रेडियो में ऐसे ही बोलना चाहिए, और हम लोग इतने उत्सुक रहते थे कि जो ये बोल रहे हैं हम भी उसी तरह उतने ही पॉज देंगे वाक्य में, उतने ही स्ट्रेस देंगे शब्दों को। तो ये सब देखिए एक दिन से नहीं होता है, बहुत लंबे समय की यात्रा है ये। इस यात्रा का अगर हम लोग पूरा वर्णन करें तो हम नीना जी सवेरा कर सकते हैं।
2: सही बात। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम की बात बताते, हम और रंजन लाल जी थे
1: जी।
2: ओरिजिनली तो वो भी अनाउंसर थे, फिर उसके बाद वो न्यूज रीडर हो गए थे। तो हम दोनों ने बरस ये प्रोग्राम किया है पत्र के लिए धन्यवाद। वो भी उस समय स्टेशन डायरेक्टर हमारे के माथुर जी थे, वो प्रोग्राम करते थे पत्र के लिए धन्यवाद। उन्होंने उस दिन नहीं किया था शायद, हम दोनों ने कर दिया था, तो उनका इन्हीं दोनों को कंटिन्यू करो
1: जी।
2: बहुत सालों तक हम लोगों ने वो प्रोग्राम किया।
0: अब देखिए पत्र के लिए धन्यवाद की बात की है
1: जी।

0: तो मैं नीना जी की बात काट रही हूँ
1: फिर काट रही है अब कहाँ ले जा रही
0: है, मन कर रहा है कि मैं बात काटूं। जी जी, के माथुर साहब यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र के केंद्र होकर के आए, तो मैं और कांति जी गृहलक्ष्मी कार्यक्रम कर रहे थे
1: जी।
0: तो जब कार्यक्रम करके निकले अपने कमरे में पहुंचे तो उनका एक चपरासी था, पंडित जी पंडित कह जाते थे कोई पहाड़ी
2: पंडित जी थे,
0: मुझे नाम नहीं याद आ रहा है समय,
2: पंडित टीकाराम जी,
0: टीकाराम जी,
1: जी, जी।
0: आपको एसडी साहब बुला रहे हैं, अब मेरे तो प्राण सूख गए मेरे प्राण इसलिए सूख गए कि मुझे महिलाओं के प्रोग्राम में जाने की कोई वो नहीं, मुझे अपने प्रोग्राम करने थे। मैं सोची कि शायद मैंने इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी की है, मुझे इसके लिए डांट पड़ेगी। खैर हम गए वहाँ तो उन्होंने बिठाया बड़े आदर से, हम प्रणाम वणाम हमने किया, उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे केंद्र पर हैं। अब मेरे तो समझ में नहीं कि क्या कहा इन्होंने। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे आपके मॉड्यूलेशन है, बहुत अच्छी आपकी आवाज है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका था। अब मेरे मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे, बड़ी मुश्किल से धन्यवाद कहा उनको, हाथ जोड़ करके जल्दी से भाग लिए। अब बाहर इतने लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि आखिर शारदा जी को कहा क्या गया है। अब मैं बड़े शान से अपने कमरे में पहुंच गई, किसी से मैं कुछ भी नहीं बोली
1: जी।
0: बाद में सबको पता चला कि भाई बात दरअसल ये थी,
1: ये थी।
0: इन मोमेंट्स को भी हमने एंजॉय किया
1: जी, जी।
0: खुश हुए और लगा बड़ा गर्व हुआ अपने ऊपर कि हम रेडियो में हैं और रेडियो को हम अच्छी तरह से समझते हैं
1: जी। आप जो सुन रही हैं शारदा जी और नीना जी की बातें, खजाना है इन दोनों के पास, और ना हमारा मन भर रहा है सुनने से और ना बताने वालों का भी मन भर रहा है।
0: मेरा तो मन नहीं भर रहा है।
3: मन तो सखियो आपका भी नहीं भरा होगा, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए शारदा लाल जी और नीना श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देते हुए आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को इस बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी सुनना ना भूलिएगा। नमस्कार।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।

0: मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। श्री शाह ने सुरक्षा से जुड़े उभरते खतरों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व और विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर से देवरिया की दूरी 4 लेन के कारण और कम हो गई है, आसानी से दूरी को तय कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि विकास के लिए गति बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान करेंगे, जिसमें प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे और निवेशकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीईएससी ग्रीन्स और आईबी सोलर की 2 निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। प्रदेश में तापमान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार 5वें दिन राज्य के बांदा जिले में देश का सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आज बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होगी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, घंटे तरन्नुम के साथ।

जी 1:02 हो चुके हैं और तरन्नुम है हाजिर लेकर प्रोग्राम होटो पे तेरी बात। और आज का जो सवाल है वो ये है आपसे कि अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com और आपके जो हमने आपसे सवाल किया उसके जवाब का इंतजार है हमें।

वेल, 1:06 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात. और आज हमने सवाल आपसे ये किया है कि अगर आपकी लाइफ पर कोई पिक्चर बने तो उसका टाइटल क्या होगा. फिलहाल चारुलता जी का मेल आ गया, बोकारो से मेल कर रही हैं. लिख रही हैं कि अगर मेरी लाइफ पर फिल्म बने और उसका टाइटल रखा जाए तो बेचैन रखूंगी क्योंकि मैं हर वक्त बेचैन रहती हूँ. मुझे लगता है कि लाइफ सही नहीं जा रही, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ जाए, मुझे लगता है कि घर का काम जल्दी से हो जाए, इसलिए मैं बेचैन रहती हूँ और मैं अपनी फिल्म का टाइटल भी बेचैन ही रखूंगी. फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया चारू जी. और आपको बता दें कि 1:06 हो चुके हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें. फिलहाल अभी चल रहा है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात, जल्दी से आप हमें मेल कर सकते हैं. सवाल आज का ये है कि अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा.

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए से ज्यादा के 19 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2014 के बाद हम नए भारत के दर्शन कर रहे हैं, ये वजीर आजम का विजन है।
1: हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश की। जनाब शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज के क्याम के जरिए राजा राम मोहन राय ने समाजी तोहियात, तगयानूसी तस्वरात और अदम मसावात के खिलाफ लोगों में बेदारी पैदा की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने समाज को तोहम परस्ती से लेकर अक्ल की तरफ, बुरे तरीकों से तरक्की पसंद शऊर की तरफ ले गए। जदीद तालीम के फैलाव में उनका ताउन हमेशा कौम को मुतासर करता रहेगा। रियासती सनअती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल अहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरक्याती प्रोजेक्टों, जारी प्रोजेक्टों और एक्सप्रेसवे के साथ तैयार किए जाने वाले सनअती इलाकों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के खुलने से पूरा खित्ता कार्गो का एक अहम मरकज बनने के लिए तैयार है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि वो पूरी लगन के साथ काम करें और पूरे इलाके की तरक्की करें। रियासती हुकूमत ने कल रियासती सरकारी मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस में 2% इजाफा किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए खजाना दीपक कुमार ने सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलाजमीन को बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से अदा किया जाएगा। इससे कबल रियासती मुलाजमीन को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए मिलेगा। रियासती हुकूमत ने 1/5 रुकनी पसमानदा तबकाती कमीशन की तकरीरी की, जिसकी सदारत रियासती हुकूमत कर रही है और मेम्बरान की तकरीरी की है। इस कमीशन की तश्कील की मंजूरी काबीना के हालिया इजलास में दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मर्दमशुमारी 2027 के तहत रियासत के खुद मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसका आगाज घरों की गिनती से होगा। आज से मर्दमशुमारी के लिए मुकर्र करदा शुमार कुंदगान घर घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इस सिलसिले मर्दमशुमारी करने वाले हापुड़ में घर घर जा रहे हैं। शुमार कुंदगान मकानात को मुस्तकिल नंबर तफवीज कर रहे हैं, जिसके बाद वो मर्दमशुमारी के मकामात पर खानदान की तफसीलात जमा करेंगे और उन्हें डिजिटल तौर पर दर्ज करेंगे। मर्दमशुमारी 2027 के एक हिस्से के तौर पर रियासत में 7 मई खुद गिनती का अमल जारी हुआ था, जो कल खत्म हुआ। रियासती मर्दमशुमारी के डायरेक्टर और चीफ मर्दमशुमारी

शुमारी अफसर शीतल वर्मा ने कहा कि अगले मरहले में आज से शुरू होने वाले मर्दमशुमारी कारकुन घर घर जाकर फॉर्म भरेंगे। जिन लोगों ने खुद शुमारी के तहत पोर्टल पर अपनी मालूमात दर्ज की है, उन्हें अपने घर जाने पर 11 हिंसों का कोड फराहम करना होगा जो मालूमात की तस्दीक करेगा। यह सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल की हिदायत पर अमल करते हुए तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ड्रेस कोड को लाजमी बनाया जाएगा। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म नाफिज किया जाएगा जिससे तलबा में मसावात और नज्म व जब्त को फरोग मिलेगा। रियासत शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात से दो चार है। जिला बांदा गुज़िश्ता रोज मुल्क के गर्म तरीन जिले से रहा। दीगर अजला में भी दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। हमारे नामा निगार की इतला है कि रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं शदीद गर्मी के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विशाख जी ने आज से सभी बोर्ड के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है जिस पर सख्ती से अमल करने के अहकाम दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

0: है। एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: और 1:16 हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात। और आज हमने आपसे सवाल किया है कि अगर आपकी लाइफ पे फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा। आप हमें आंसर कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। फिलहाल एक ट्रैक आप तक और आपके जवाब का इंतजार है। हमें सुनते रहिए तरन्नुम के साथ।

और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज का जो सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और सही बात है, लाइफ पे जब बात होती है, लाइफ की जब बात होती है, लाइफ से जब बात होती है, तो फिर बात कुछ और ही होती है। और ज़िंदगी ये सच में कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले लगता था कि 2026 आया है, जैन आया, फेब आया, मार्च आया, और फिर अप्रैल एंड मई, और मई भी एंड हो रहा है, जा रहा है। इसी तरह ज़िंदगी है। ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा इंसान को खुशियाँ मिलती हैं, तो ज़िंदगी लगता है कि बस पल आया और चला गया। लेकिन ज़िंदगी में खुदा नखास्ता अगर गम का सामना हो जाता है, तो फिर वही लम्हा, वही घंटे बहुत ही तवील लगते हैं, बहुत ही लेंदी लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है, ये कहीं ना कहीं ठहर गया है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, ये लम्हे क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ। और यही शायद ज़िंदगी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सुबह होती है तो शाम का आना लाजमी है, ज़रूरी है, शाम के बाद रात का आना ज़रूरी है, लाजमी है। उसी तरह ज़िंदगी है, धूप छाँव, दिन रात, सुकून और नासुकूनी, बेसुकूनी, ये सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आती रहती हैं। फिलहाल आज हमने आपसे सवाल ये किया है कि अगर आपकी लाइफ पर कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा। रोशनी रावत जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, लिख रही हैं, नमस्ते तरन्नुम दीदी जी, कैसी हैं आप। नमस्ते रोशनी, आप कैसी हैं, लिख रही हैं, प्रोग्राम बहुत बिंदास लग रहा है, 12 बजे से लगातार सुन रही हैं, और चंडीगढ़ में है, लिख रही हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई फिल्म बने तो मैं उसका नाम रोशनी ख्वाबों की रखूंगी। वाह क्या बात है, क्यों रखेंगी, इसलिए कि उन्हें घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, पहाड़ों पर जाना पसंद है, वहां जाकर अपनी दुनिया में खो जाना पसंद है, किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल आज़ाद अपनी ही दुनिया में रहना बहुत अच्छी बात है। और सच में है, अगर इंसान अपने आप से मिल लेता है तो फिर समझ लीजिए उसको दुनिया में किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी चीज़ को ढूंढने की तलाश में रहते हैं, अपने वजूद को तलाशते हैं, और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दूसरा हमारी तारीफ करे, दूसरा जो है वो हमें देखे, दूसरा क्यों, आईने के सामने खड़े होइए और खुद अपने आप से रूबरू होइए, और आपसे ज़्यादा, आपसे अच्छा भला कोई आपको समझ सकता है, नहीं। फिलहाल एक और बहुत ही सूदिंग सा ट्रैक है इस माहौल के हिसाब से, इस यस एग्जैक्टली गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में दिमाग का दही जो है वो हुआ जा रहा है, तो एक बहुत ही सूदिंग नंबर आप तक।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

वेल टाइम बता दें आपको, 1:30 प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात, तरन्नुम है आपके साथ। और आज का सवाल ये है कि अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा। जस्ट मेल मी FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com।

और मेरे पास मेल आ चुके हैं। 1:32 का वक्त है। वीके गुप्ता साहब का मेल आया है। विनोद कुमार गुप्ता है, गोला गोकर्ण नाथ से है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, अगर मेरे लाइफ पर कोई फिल्म बनेगी तो मैं उसका नाम रखूंगा मेरी एक नन्ही परी। अच्छा, इसका मतलब विनोद गुप्ता साहब, आपके पास एक छोटी सी नन्ही सी परी है और आप उसे बहुत चाहते हैं और इसीलिए आप अपने फिल्म का, अपनी लाइफ का जो टाइटल होगा, फिल्म होगी अगर बनेगी तो उसका नाम आप रखेंगे मेरी एक नन्ही परी। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मेल करने के लिए। आगे लिख रहे हैं कि मेरे साथ मेरे मित्र अजय कुमार गुप्ता जी भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए होठों पर दिल की बात। फिलहाल आपकी जो दिल की बात है वो हम समझ रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम हॉट मेल, उसमें आपकी जो फरमाइश है वो हम जरूर शामिल करेंगे। और रही बात आपकी दोस्त की कि वो सुन रहे हैं, मेरा उनको नमस्कार बोलिए आप और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुन रहे हैं। नीलू शर्मा जी का मेल आ गया, लिख रहे हैं हाय तनु कैसी हो, और मेरे पर आधारित अगर कोई मूवी बने तो उसका नाम होगा हमको तुमसे प्यार है और दिलवाले, क्योंकि मुझे दोस्ती करना और दोस्ती निभाना बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होना, साथ देना, ये मेरे अनुभव कहते हैं। बहुत सारा, बहुत ही खूबसूरत सा सजा कर इन्होंने मेल किया है और लिख रहे हैं कैसी हो, तो बिल्कुल अच्छे हैं। और गर्मी है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले लोग सवाल करते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, गर्मी कितनी है, पहला जो सवाल का बाद में ये होता है ना कि उफ कितनी गर्मी है। सामने वाला भी कहता गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी खुश होती है कि भाई ये कुछ भी कर लें हमें तो कम होना नहीं है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी है, जाड़ा है तो जाड़ा है। तो फिलहाल ये सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। महेंद्र

दीपन जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं आदरणीय फेवरेट आरजे तरन्नुम मैम जी कैसे हैं, सादर प्रणाम। मैं महेंद्र दीपन गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से एफएम रेनबो लखनऊ पर प्रोग्राम सुन रहा हूं और आज जो सवाल पूछा है आपने कि अगर हमारी जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा, तो मैं अपने दिल की बात साझा करना चाहता हूँ। और सच कहूँ मैम तो मेरी ज़िंदगी में संघर्ष इतना ज़्यादा रहा है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस पर कोई फिल्म बने। कई बार मुश्किलें इंसान को भीतर तक थका देती हैं, लेकिन अगर कभी भविष्य में ऐसी कोई फिल्म बनी तो उसका टाइटल क्या होगा, और ये टाइटल सुनहरे दौर का मुसाफिर ये इनकी टाइटल होगा इनका फिल्म का। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सजा कर मेल करते हैं आप, बहुत ही खूबसूरती से टाइम लेकर लिखते हैं और बहुत इत्मीनान से आप भेजते हैं हमें, और जो आप पोस्टर बना के भेजते हैं महेंद्र जी, ये बड़ा दिल को छूता है, बहुत बहुत शुक्रिया। लिख रहे हैं कि इनकी जो लाइफ है उस पर फिल्म बनेगी, सुनहरे दौर का मुसाफिर ये टाइटल होगा। और टाइटल इसलिए होगा क्योंकि तमाम मुश्किलों और कड़ी मेहनत के बीच रेडियो की ये सुरीली तरंगे और 90 के दशक का वो सुनहरा दौर ही है जो मेरे दिल को सुकून देता है और मुझे एक मुसाफिर की तरह आगे बढ़ते रहने का हौसला देता है। राजस्थान से मेल किया महेंद्र दीपेन जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रामेश्वर जी का भी मेल आ गया है, लिख रहे हैं होटो पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन तरंगम जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है रामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना प्यारा सा नाम रखा तरंगम। और लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति बहन जी करती हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामेश्वर आपको। लिख रहे हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधू निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, बेद बाबू कठेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और अभी और भी बहुत सारे मेल हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बातें करो फिर थोड़े से गाने सुनो फिर थोड़ी सी बातें करो, फिर बातें करो फिर थोड़ा सा गाने सुनो। ये जो लाइफ होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है, और इसमें जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिल बहुत तेजी से आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल एक ट्रैक है जो पहुंच रहा है आप तक, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
3: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
4: जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा।
2: अंदाज है सबसे निराला,
3: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
2: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

और 1:48 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात और तरन्नुम है आपके साथ। और हमने जो सवाल ये किया है आपसे कि अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनती है तो फिर उसका टाइटल क्या होगा। प्रवीण जी का मेल आ गया मेरे पास, लिख रहे हैं कि मेरे घर में ऐसी ऐसी सुपर नेचुरल अजीबो गरीब घटनाएं होती रहती हैं जिनसे मैं लगातार जूझता आया हूँ, तो अगर मेरी लाइफ पर कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल होगा कि भूतों ने किया परेशान। प्रवीण जी देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो भूत और प्रेत ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो वो ये है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ में अगर आप भूतों से परेशान हो जाएंगे तो बताइए लाइफ फिर आगे कैसे बढ़ेगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो फिर आप घर ही क्यों ना बदल दें, या फिर पॉसिबल हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर लें जिससे जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको हमेशा परेशान करती हैं, तो फिर आप काफ़ी हद तक उससे निजात पा सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया। जावेद अख्तर साहब का मेल आ गया, लिख रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई फिल्म बनेगी, मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं ये, लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो उसका टाइटल होगा घर घर की कहानी। और बहुत बहुत धन्यवाद जी जावेद साहब। और ये टाइटल क्यों होगा, ये तो भाई अगर कोई लड़की लिख के भेजती तो समझ में आता है कि भाई ये टाइटल होना चाहिए फिल्म का, लेकिन आप हो सकता है कि कुछ घर घर की कहानी हो, एक घर आपका इधर हो, एक घर कहीं और हो, दूसरा घर कहीं और हो, तो इसलिए आपको लग रहा है कि इस लाइफ में अगर फिल्म बने तो टाइटल होगा घर घर की कहानी। बसंत कुमार सिन्हा शॉ का मेल आ गया है, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बसंत कुमार जी, आपको भी गुड आफ्टरनून टू यू टू। लिख रहे हैं कि अगर मेरे नाम से कोई फिल्म बनाई जाएगी तो फिल्म का नाम रखूंगा शीत बसंत। क्या बात है, अपने नाम से जुड़ा हुआ ये नाम रखेंगे। बस

कुमार सिन्हा है, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से इन्हें हमें मेल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। गुलफ्शा सिद्दीकी साहब का मेल आ गया है, लिख रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम अप्पी, मैं गुलफ्शा सिद्दीकी संडीला से हूं। वालेकुम अस्सलाम। आगे लिख रही हैं कि मेरी लाइफ पर कोई फिल्म बनेगी तो मैं उसका नाम रखूंगी धोखेबाज रिश्तेदार, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे रिश्तों में धोखा खाया है लेकिन अब अकल आ गई है, तो इसलिए ये लिखेंगी कि धोखेबाज रिश्तेदार। तो जरूरी है कि भाई रिश्तेदार जो हैं उनसे एक लिमिट तक ही रिश्ता अगर निभाया जाए तो रिश्ता बढ़िया खूबसूरत होता है, लेकिन अगर आप बेवजह बिना किसी उसके आप किसी से ज़बरदस्ती ताल्लुक बरकरार रखे हैं तो मेरे हिसाब से तो फिर वो रिश्ता चलता नहीं है बल्कि घसीटा जाता है। लाइफ उसमें घसीटते रहते हैं ना, जैसे कोई नाराज़ जानवर हो जाए और आप उसे घसीटिए कि भाई घर चलो। अक्सर जानवर ये कहते हैं कि जब आप उनको सैर पर ले जाते हैं तो जानवर घर आना नहीं चाहते, और मेरे ख्याल से जो रिश्ते होते हैं जिनमें कुछ दम नहीं होता, अगर आप इस तरह से रिश्तों को खींच रही हैं जैसे कि एक नाराज़ जानवर, तो उस रिश्ते से दूरी बना लेना ही मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। रामराज जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं कि अगर मेरी तरह मेरे ऊपर कोई फिल्म बने तो शीर्षक होगा हैसियत, और हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि फिल्म बनाए। अरे रामराज जी कहाँ पहुँच गए हैसियत हैसियत की बात करने। एक छोटा सा सवाल है उसका अच्छा सा जवाब दीजिए, और इतना निराश नहीं होना चाहिए। कब किसका वक्त बदल जाए ये कोई देख कर नहीं आया। जिला राय बरेली गाँव पहाड़ीपुर से हैं रामराज। राजू भानु शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत प्यार भरा आपको भी हमारा नमस्कार। तो भाई ये सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे लाइफ पर कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल ये होगा ये होगा ये होगा, और लाइफ में अगर कहा जाए, अगर हम आप हमें सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल खुले दिल से हम आपको बताएं कि आज तक कोई ज़िंदगी में ऐसा दोस्त किसी का बना ही नहीं है कि जो अपनी सारी राह सारी दिल की बातें उससे शेयर कर चुका हो, क्योंकि हर इंसान सोच के समझ के जहाँ पर जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही रिश्तों को निभाता है। वो दौर और था जब लोग बेलौस मोहब्बत करते थे, बेलौस रिश्ते जीते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। दोस्ती के नाम पे भी लोग धोखा देने से बाज नहीं आते हैं। फिलहाल आपके अच्छे अच्छे दोस्त हों ऐसी हम शुभकामना आपको देते हैं। 1:53 प्रोग्राम चल रहा था होटो पे तेरी बात, वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हॉट मेल, तो मेल कीजिए, सुनिए अपने रिक्वेस्टेड नंबर। फिलहाल सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।